106.3 FM, Gio Bendaz.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank in association with Naseem Healthcare.

0: Tanisha.
1: Tanisha. Kaburin Sensei Buddha Saman only on Radio 106.3 FM. Tanisha aage ja aapke saath bindas mornings lekar a very good morning meri jaan. Thursday ka din August 27th. खुश तो बहुत हो गए तो मैं आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ क्योंकि वीकेंड इज हियर साथ में टुडे इज 27th ऑफ अगस्त बैक टू स्कूल बैश आज होने वाला है अबू सुद्रा मॉल में सो सुपर एक्साइटेड फॉर दैट वन तो वो बेटर ही हो जाएगा ना जो आज हम सेलिब्रेट करने वाले
2: काली काली जुल्फों के कंधे न डालो हमें जिंदा रहने दो
1: मधु शर्मा की आवाज में ये खूबसूरत गाना और आप अधूरे मेरे बिना आई होप सो मैं अधूरी आपके बिना और हम सब अधूरे वीकेंड के बिना बट नो मोर मेरी जान दिस वन्स डेडिकेटेड टू वीकेंड All these amazing tracks are lined up for you in this hour. और ढेर सारी बातें करनी है आपसे कल का जो क्रेजी दिन था उसके बारे में भी बताऊंगी मैं लेकिन उससे पहले जानना चाहूंगी आपके हालचाल बताइए कैसे हैं आप आपका कल का दिन कैसा रहा आज के क्या प्लान्स हैं वीकेंड के प्लान्स ऑलरेडी बन गए हैं या नहीं सब जानना है 3311 1063 पर मैसेज कीजिए मुझे जो ऑलरेडी यू नो काम वाम के लिए निकल चुके हैं ड्राइव कर रहे हैं बी वेरी सेफ मेरी जान सीट बेल्ट लगाना तो भूलते नहीं हैं आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग हैं यहाँ पे बस फोन वोन नहीं यूज़ करना है ठीक है आप इंपॉर्टेंट हो यार अपना ख्याल रखा करो एंड दोज हु कैन मैसेज मी राइट नाउ आ जाओ गुड मॉर्निंग कर दो एक प्यारी सी और दिन बना दो मेरा सुधरे रेडियो 106.3 FM जी बिंदास मेरी

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसेराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसेराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ
4: ਭਜਨ ਮਾਨ
3: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ
5: ਆਲ ਆਫ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ
6: हर सुबह 6 से 10 हर जिसका निशा को बिंदास मॉर्निंग में मॉर्निंग
7: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
8: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: तनिषा
1: अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना है ना. द फैक्ट स्टिल सैडन्स मी कि ये गाना इम्तियाज अली मूवी में रखना ही नहीं चाहते थे. वो तो दीपिका ने उन्हें कन्विंस किया कि नहीं दिस इज परफेक्ट. एंड देन द वीडियो, ओ माय गॉड, इस गाने की वीडियो इज सो सो सो डीप एंड सो ब्यूटीफुल. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM तनिषा, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं. यहाँ पर मैसेजेस का सिलसिला शुरू करते हैं. सो वी हैव गॉट नाज़नी जी भैया कहती हैं, Good morning. Unless you let go of what's behind you, unless you forgive yourself, unless you forgive the situation, unless you accept that it's over, you cannot move forward. So, so, so true. It is relatable for everything in our life, you know. It can be a career opportunity. It can be any situation in life. It can be relationships, anything at all. अगर आपको आगे बढ़ना है तो चीज़ों को पीछे छोड़ना होगा, लेट गो करना होगा. हम साथ में कैरी फॉरवर्ड करके बर्डन नहीं चल सकते यार. अगर वो करके चलेंगे, यू नो, साथ लेकर आगे बढ़ेंगे तो नई चीज़ों के लिए जगह कैसे बनेगी ज़िंदगी में? ओवरवेलमिंग हो जाएगा ना सब कुछ. सो डोंट डू दैट टू योर सेल्फ. आई नो इट्स ईजियर सेड देन डन. मेरे लिए भी मुश्किल होता है, बट करना तो पड़ेगा मेरी जान. देन वी हैव शशिकांत पाटिल जी कहते हैं, Never give up on something you believe in. You never know, you might be just another breath away from it. So true. हमें नहीं पता यार, एक दिन में जिंदगियां बदल जाती है. क्या पता जिस चीज के लिए आप बहुत वक्त से इंतजार कर रहे थे वो ये संडे आते तक आपको मिल जाए. We never know, right? So always be ridiculously optimistic, not blindly but ridiculously. ठीक है कि मेरे लिए तो सब बढ़िया ही होने वाला है. And then Sandhu ji ka bhi message hai, wishing you an early morning, have an awesome day ahead with a lovely smile of yours. God bless you, Jio Bindas, Harpal Sandhu from the Khansegri. Thank you so much Sandhu ji, wishing you a good day too. And Imran ji ka message aaya hai, no static, no noise, just pure sunshine is coming in. Our life by RJ Tanisha with Bindas Morning. Are are yaar ye Imran ji kamal kar dete roz roz hain. Thank you so much Imran ji, good morning. Aur Bilal ji ka bhi message aa gaya hai, good morning ji, happy weekend to everyone. Yes, very much excited about the weekend. Lot ke rehti hu aur abhi jo maine baat kari thi na ki be ridiculously optimistic, uske bare mein thodi aur baat karni hai mujhe. ठीक है, आती हूँ फिर देर में. गाना सुनो आप, कूल सॉन्ग ऑफ द आवर. स्टे ट्यून्ड ऑन रेडियो बिंदास. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है.

0: Manila's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM, Gio Bindas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी।

0: Tanisha.
1: Tanisha. You're listening to Radio 11.6.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas morning chal raha hai yahan par. Adhura to bhai bahut feel karti hu main ye weekend ke bina. And it is finally here. So I'm super excited. So I was telling you about being ridiculously optimistic because अगर हम ये अपने दिमाग को ट्रेन कर लेंगे ना सोचने के लिए कि यार व्हाटएवर इज हैपनिंग द वर्स्ट वर्स्ट थिंग इज हैपनिंग पर वो मेरे ही भले के लिए हो रही है तो आप कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव परसेप्शन उस सिचुएशन में से भी निकाल लोगे मे बी आपको उस टाइम पे रियलाइज नहीं होगा हम सबको यही होता है ना कि अभी जो भी हो रहा है दिस इज नॉट ओके देन आफ्टर अ वाइल व्हेन थिंग्स गेट बेटर एंड थिंग्स फॉल इनटू प्लेस इवेंचुअली तब हम पीछे मुड़ के देखते हो फिर रियलाइज होता है अरे ये तो अच्छे के लिए हुआ था यार सो वी नो कि वो होना है तो क्यों ना हम वो आज से ही शुरू करें हाँ अभी प्रेजेंट को तो हम सोच सोच के बर्बाद कर देते हैं उसे इंजॉय भी नहीं कर पाते बस स्ट्रेस लेते रहते हैं वरी करते रहते हैं अपनी हेल्थ को यू नो खराब करते रहते हैं सो डोंट डू दैट टू योरसेल्फ ठीक है यू डोंट डिजर्व दैट यार चिल करने का इंजॉय करने का जो होगा देखा जाएगा ठीक है And stay tuned to Radio 11.6.3 FM. Jio, bindaas meri jaan.

0: वायु की आवाज में बातें करो. बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि बात करने से ही बात बनती है. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. और वेदर की बात मैं बिल्कुल करना तो नहीं चाहूंगी, पर कर लेनी चाहिए. ठीक है, फिर से ये वही कर रहा है यार. ये जाने वाला था ना, क्या है ये? इट्स 34 डिग्रीज राइट नाउ, बट इट फील्स लाइक 44. एंड यस्टरडे इवनिंग आई रिमेंबर, एज आई टोल्ड यू, कि यू नो ओनम सेलिब्रेट कर रहे थे, सो वी ऑल वर ड्रेस्ड ब्यूटिफुली. सो आई वॉज वेयरिंग अ साड़ी, एंड इवनिंग में जब मैं बाहर निकली, इट वॉज लाइक द ह्यूमिडिटी वॉज सो क्रेजी, इट वॉज सो डेंस कि यू नो सफोकेशन फील हो रहा है. यू आर नॉट एबल टू ब्रीद, ऐसी बुरी हालत थी. सो प्लीज़ अपना ख्याल रखो मेरी जान, क्योंकि अभी जाते जाते वेदर हमें और परेशान करने वाला है. सो यू नो स्टे हाइड्रेटेड, बहुत सारा सनब्लॉक लगाओ, और कहीं भी बाहर जा रहे हो तो अपने साथ पानी रखो एंड बहुत लाइट खाना खाओ. ठीक है, बट यार कल जो खाना खाया है, दिल भी खुश हो गया और पेट भी खुश हो गया, मज़ा ही आ गया बाय गॉड. और जो इतनी सुंदर सुंदर पिक्चर्स आई हैं, सब देखने मिलेगी आपको हमारे सोशल मीडिया पर. वैसे वीडियो ऑलरेडी जा चुका है हमारे कल के सेलिब्रेशन का, सो इफ यू हैवंट येट, चले जाइए हमारे सोशल मीडिया पर, radio.q इज द हैंडल, चेक आउट कीजिए और थोड़े ऐसे कमेंट शॉमेंट यू नो लाइक शाइक कर दीजिए. और सुनते रहिए रेडियो 106.3 FM, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश है ये गाना, फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना.

0: दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Tanisha.
1: Tanisha. What a beautiful track, Arzia from movie Dilit hai. और ये मुझे किसी ने request किया था यहाँ पे. SKG का message आया था मुझे. उन्होंने कहा था please play Arzia. Thank you so much for requesting this one because it's absolutely beautiful track and all the people who are asking for back to school का registration. रुको अभी बताती हूँ.

0: पहले ये तो सुन ले कि इस घंटे में कौन कौन से गाने आने वाले हैं।
1: हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में।
0: ब्यूटीफुल ट्रैक और अरिजीत सिंह ने जो जान डाली है ना इस रेंडिशन में, कमाल ही है यार।

0: ये गाना सुन के फुल वीकेंड वाइब्स हो जाती है मेरे लिए तो यार। And all these amazing tracks are coming up your way in this hour. And back to school, जो कि आज होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में. And people are still asking for the registration. मेरी जान, sorry to say कि अभी registration close हो चुके हैं. दो दिन पहले ही close हो गए थे. All the people who have registered already, उन्हें calls जा चुकी हैं. और जिन्होंने register किया है, वो आज हमें मिलने वाले हैं अबू सिद्रा मॉल में दोपहर 3 से शाम 7 बजे तक. बहुत सारा fun होने वाला है, बहुत सारी मस्ती होगी. कमाल कमाल की games और challenges हमने ready करके रखे हैं बच्चों के लिए. So बहुत सारा धमाल करने वाले हैं. और जो इस बार रजिस्टर नहीं कर पाए, डोंट वरी, अभी और भी है. बस आपने क्या करना है, आपने हमें सुनते रहना है यार.
1: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल. अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन.
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट.
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर.
2: कॉल 7022525.
1: क्रिएटिव पार्टनर, प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव. फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank. In association with Naseem Healthcare. No queues, no hassle. Just book your appointment on the Naseem Hayat app and experience faster consultations. Download it today.

0: Danisha.
1: Sadhana Sargam aur Sonu Nigam ki awaaz mein Salaam e Ishq title track only on Radio 106.3 FM. Danisha aapke sath bindas morning chal rahe hain yahan par and PHCC ne launch kar diya hai back to school health campaign jo ki chalne wala hai 30th August se and it will go on till September 10 aur sare public schools aur kindergartens mein ye hoga. And जो इसका थीम है वो है हेल्दी बॉडीज बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेशंस एंड दैट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग सो जो की मैसेजेस देने वाले हैं वो जो उनका प्लान है यू नो थ्रू द एक्टिविटीज वो कि हेल्दी स्लीप इज इम्पॉर्टेंट यू नो इनफ स्लीप चाहिए होती है एंड आई डू नॉट अंडरस्टैंड दिस इन किड्स यार क्यों वो सोना नहीं चाहते हमसे पूछो हमें चाहिए कि प्लीज थोड़ा और वक्त दे दो सोने के लिए एंड आई रिग्रेट जो मैंने वक्त ऐसे जाया किया है ना जब मम्मी छोटी थी मैं तब मम्मा बोलती थी कि जाओ बेटा सो जाओ एंड आई लाइक नहीं मुझे नहीं सोना है मैं नहीं सोऊंगी जैसे कुछ मिस आउट कर जाऊंगी अभी मुझे सिर्फ सोना है इट इज एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड आई थिंक हम सबके साथ ये चीज़ होती है Also, they will be teaching kids about reducing the excessive screen time. Ye to bahut important hai. Drinking enough water, yes. Eating healthy and staying physically active. Taking care of mental and emotional health. Building positive social behavior. Developing self-discipline and personal responsibilities. Aur, you know, weekly tracking cards bhi honge. Self-assessment tools unhe diye jayenge so that wo apni daily habits ko khud monitor kar sake. Unhe responsible banaya jayega. And I am in awe. मैंने कल भी बात की थी इस चीज़ के बारे में मैं एवरी डे यू नो हू एवर आई एम मीटिंग राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू कारिकुलम जो कि आया है इट इज़ सो गुड एंड इट इज़ सो फ्यूचर फोकस्ड एंड दैट टू यू नो लाइफ स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है वो सो आई एम एब्सोल्यूटली लविंग इट वट एवर मिनिस्ट्री इज डूइंग फॉर द किड्स राइट नाउ फॉर देयर बेटर फ्यूचर इट इज कमेंडेबल फिलहाल भेजियो जबरदस्त हिट योर वे स्टे ट्यून एंड जियो बिंदास
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Ali 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. और भाई अलजानो बेरेना जो है वो एकदम रेडी है फॉर कतर चाइना क्लैश, जो कि फीबा बास्केटबॉल वर्ल्ड कप कतर 2027 आज होने वाला है. यस, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री फॉर एवरीवन. सो जो भी जाना चाहता है जाओ, इन्जॉय करो, विटनेस करो. और वीकेंड है यार, मतलब मैंने कहा था ना कि अगर कुछ डिसाइड नहीं किया है कि क्या करना है इस वीकेंड पे, तो लो जी एक आइडिया तो मैंने अभी दे दिया है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं मेरे पास जो कि मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी. सब कुछ अभी बता दूँगी क्या, और भी चीज़ें करनी है हमने. एंड यहाँ पे मुझे स्टिल मैसेजेस आ रहे हैं बैक टू स्कूल के लिए मेरे दोस्तों. रजिस्ट्रेशन बंद हो चुके हैं, बट देर इज़ अनदर बैक टू स्कूल विच इज़ कमिंग इन फ्यू डेज. उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, बट नॉट टुडे. आज हम बात करने वाले हैं आज के बैक टू स्कूल के बारे में. एंड वी आर सुपर एक्साइटेड. यू नो, बच्चों के लिए जो जो एक्टिविटीज़ प्लान की है दे आर रियली अमेजिंग. उन्हें भी बहुत मज़ा आएगा एंड आई एम श्योर हमें भी बहुत मज़ा आएगा. एंड ऑल द पेरेंट्स जो कि वहाँ पर आने वाले हैं अपने बच्चों के साथ, आप लोगों के लिए भी चीजें प्लान्ड है, तो स्ट्रेस नहीं लेने का है, ठीक है. और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ टू यू बिंदास.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Ready?
3: Ready!
2: To learn!
3: Yes!
2: To play!
3: Absolutely!
2: To grow!
3: With Maserati!
1: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैजराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ.
3: मिल्क, चीज, योगर्ट, लवली एग्स.
1: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैजराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट चॉइस.
4: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को.
5: सुबह शाम बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
4: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
5: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
4: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
5: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
4: Brought to you by Riyadha Medical Center.
6: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
7: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
4: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more clean.

0: तनिषा।
1: उदित नारायण साहब की आवाज में घर से निकलते ही ब्यूटीफुल ट्रैक ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर। एंड जितने भी स्काई वॉचर्स हैं कतर में, अपना अलार्म सेट कर लो, क्योंकि एक बहुत ही स्पेक्टेक्युलर पार्शियल लूनर एक्लिप्स आप देख सकते हैं फ्राइडे मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग, ओके 4:57 AM पर। जी हाँ, सो फ्राइडे 28 अगस्त को अर्ली मॉर्निंग ये होने वाला है। इट विल बिगिन एट 4:23 AM और 4:57 AM तक ये विजिबल फेस में आ जाएगा, लाइक मैक्सिमम। एंड द मून विल बी वेरी क्लोज टू द वेस्टर्न साउथ वेस्टर्न होराइजन, सो एक क्लियर व्यू इंपॉर्टेंट है अगर आप देखना चाहते हैं तो। एंड द मून विल सेट अराउंड 5:11 AM, मीनिंग द विंडो फॉर व्यूइंग इन कतर इज क्वाइट शॉर्ट। सो इफ यू आर एन एंथुजियास्ट तो अपना फटाफट से ऐसे अलार्म सेट कर लो एंड डू नॉट मिस दिस आउट। द मून माइट अपीयर रेडिश और कॉपर कलर ड्यूरिंग दिस एक्लिप्स, ठीक है। कोई स्पेशल आई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है इसे देखने के लिए, बट या बाइनोकुलर्स या फिर टेलीस्कोप है तो वो एनहांस कर देगा व्यू को। बाकी आप नेकेड आईज से भी देख सकते हैं। एंड सेंडिंग अमेजिंग ट्रैक योर वे, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
4: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
3: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है. कैसे समझाओ इस लड़के को.
3: सुबह शाम बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
2: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
3: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
2: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
2: Brought to you by Riyadha Medical Center.
1: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
4: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
2: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
1: Listeners of

You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Dinisha आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहा है यहाँ पर और एक स्टडी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही कमाल है और मैं बहुत जोर से अग्री करती हूँ उस पर्टिकुलर चीज से नहीं बट इफेक्ट से उसके. अच्छा मैं बताती हूँ ना आप समझ जाओगे. सो दिस स्टडी सेज पीपल हु लिसन टू म्यूजिक हैव नियरली 40% लोअर रिस्क ऑफ डिमेंशिया. ठीक है स्पेसिफिकली डिमेंशिया के लिए आई कांट से एनीथिंग बट यस आपकी हेल्थ पे बहुत पॉजिटिव इफेक्ट होता है इसका म्यूजिक का. इट काम्स यू डाउन यू नो आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको थोड़ा रिलैक्स करवा देता है म्यूजिक. सो दैट इज द बेस्ट पार्ट एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग हियर फॉर यू मेजर.

0: टेलीपोर्ट करके ऐसी दुनिया में ले जाता है ये गाना मुझे, जहाँ कुछ गलत ही नहीं है, सब बढ़िया हो रहा है, और अगर कुछ बुरा हो भी रहा है तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा है।
1: केड़ा कर गई है जादू, मुंडे की दे तू काबू, छड़े ना बिल्लो किसे कम कार दे।
0: दिलजीत दोसांझ की आवाज में मैजिक एंड देन दिस वन, आई लव दिस ट्रैक। आपकी सेहत का पूरा पूरा ख्याल रख रही हूँ मैं यहाँ पे ये बढ़िया बढ़िया गाने चलाकर। आप ऐसी कौन सी चीज एक हर रोज कर रहे हैं अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए, ये जानना चाहूंगी। 3311063 पर मैसेज कीजिए और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव जियो बिंदास। रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: Nisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. The Nisha, aapke saath Bindaas Morning chal raha hai yahan par. It's the time to discuss. To dekho, bologe hi. Kyunki weekend aa gaya. Yes. Feelings ekdam aise mutual hai hamari, meri jaan. But as I said, ki agar weekend ka koi plan abhi tak nahi bana hai, to I'm going to let you know ki kya kya ho raha hai Qatar mein is weekend jo aap enjoy kar sakte hain. So, hour and hour back to school chal raha hai. 26 se ye start hua tha. That is yesterday se. 29th August tak ye chalne wala hai. West Walk mein sham 5 baje se lekar 10 baje tak ekdam free hai. So, ye jo program hai, it is organized in collaboration with Qatar National Commission for Education, Culture and Science. Aur inka jo slogan hai, with knowledge and work, we build the nation. And it is absolutely amazing. Aur saath mein aaj hone wala hai, Qatar vs. China, FIBA Basketball World Cup 2027, Asian Qualifiers. Yes, so jo bhi wo dekhna chahte hain, Al Janoub Arena mein ye ho raha hai, aap witness kar sakte hain. It is absolutely free, shaam ko 7 baje. Then there is Paw Patrol, which is 29 August tak chal raha hai. And saath mein Run the Dome, 28th or 29th August ko. That is tomorrow and day after tomorrow, it will be happening Aspire Dome mein. Subah 7 baje se lekar 8 baje tak. Aur race timings alag hai different categories ke liye. So, aap wo check kar sakte hain. Iska fee hai 100 riyal. And school checklist chal raha hai. Back to school edition, Misharab Galeria mein. वहाँ पर भी जा सकते हैं. इट इज़ हैपनिंग टिल 29th ऑफ अगस्त शाम 4 बजे से लेकर 10 बजे तक. एंड देन FIVB बॉयज़ अंडर 17 वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी चल रहा है एस्पायर जोन में 29th अगस्त तक. देन बीच एंड आइलैंड क्लीन अप कर सकते हैं आप मिनिस्ट्री ऑफ म्यूनिसिपालिटी के साथ मिलकर. 29 अगस्त को ये होने वाला है खुजन में सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक. इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री बट रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है. तो मिनिस्ट्री की वेबसाइट चेक कीजिएगा. और यू नो समर शॉपिंग फेस्टिवल तो बहुत सारे मॉल्स में चल ही रहा है मेरी जान. सो वो भी आप इन्जॉय कर सकते हैं. अलॉन्ग विद दैट मॉर्निंग जॉगिंग सेशन होने वाला है DFC में. चल रहा है ऑलरेडी 31st August तक ये चलने वाला है. जल्दी खत्म होने वाला है. सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट यू कैन. 7:30 AM से लेकर 9 AM का टाइम है इसका. और एंट्री फ्री है बट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है. ठीक है. और आज होने वाला है बैक टू स्कूल बैश. हाँ जी, ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क की टीम के साथ अबू सिद्रा मॉल में हम मिलने वाले हैं दोपहर 3 बजे और बहुत सारा फन करने वाले हैं. तो वहाँ पर भी आ सकते हैं आप. जहाँ जिन जिन लोगों ने रजिस्टर किया है उन्हें ऑलरेडी मैसेजेस आ चुके हैं, कॉल्स आ चुके हैं. सो सी यू देयर. स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव. जी बिंदा.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
3: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
2: द वेट इज फाइनली ओवर.

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनीषा को बिंदास मॉर्निंग में। मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। डाउनलोड इट टुडे।

0: Tanisha.
1: दिल जी दो सांच की आवाज में मैजिक होली ऑन रेडियो 106.3 FM तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर।
2: ये है चलती फिरती डिक्शनरी।
1: सो डिक्शनरी से जो आज मैं वर्ड लेकर आई हूँ वो एक ऐसा वर्ड है उस टाइप की उस प्रजाति के लोग हम सब ने देखे हुए हैं, हम सब के आसपास होते हैं ऑफिसेस में, यू नो फ्रेंड्स ग्रुप में, यू विल नो, आपके दिमाग में नाम आएगा जब मैं ये वर्ड बताऊंगी। सो द वर्ड इज ब्लैदरस्काइट, BLATHERSKITE, ब्लैदरस्काइट, जिसका बेसिकली मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जो कि बहुत बात करता है, ठीक है, बहुत बात करता है पर काम की चीज उसमें एक या दो सेकंड की होती है या फिर कभी कभी तो वो भी नहीं होती, खोखली बातें, फालतू की बातें कर देते हैं, ठीक है, पर फुल कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, ये जरूर है उनमें। एंड आई थिंक जो भी इस वक्त ऑफिस में है या फिर जा रहे हैं, कोई ना कोई कॉलिग का नाम ऐसे दिमाग में आ रहा होगा, या फिर पीपल हु आर लिसनिंग राइट नाउ, आपके फ्रेंड्स में से किसी ना किसी का नाम तो जहन में आ ही रहा होगा, है ना। सो वी ऑल हैव सच काइंड ऑफ पीपल इन आवर लाइफ हु आर ब्लैदरस्काइटिंग देयर वे थ्रू लाइफ, या राइट, जिसका भी नाम आ रहा है उसका ख्याल छोड़ो, फिलहाल भेजो एक बढ़िया गाना, उस पर एंजॉय करो और सुनते रहो रेडियो ऑलिव। जय बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है, फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना।

0: Ready?
1: Ready!
0: To learn!
1: Yes!
0: To play!
1: Absolutely!
0: To grow!
1: With Maserati!
2: इस स्कूल सीजन हर दिन को फ्यूल करें डिलिशियस और न्यूट्रिशियस मैसराटी फ्रेश प्रोडक्ट्स के साथ
1: मिल्क चीज योगर्ट लवली एग्स
2: ब्रेकफास्ट से लेकर लंच बॉक्स और स्नैक्स तक मैसराटी है आपकी पूरी फैमिली के लिए

0: दस मॉर्निंग, दस मॉर्निंग हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस डाउनलोड इट टुडे

0: Danisha. Shreya Ghoshal aur Vishal Radlani ki awaaz mein drama queen only on radio 106.3 FM. Danisha aapke saath bin das morning chal rahe hain yahan par.
1: Lame jams
0: ka sawal lekar aa gayi hoon ji main, aur aaj ka jo mera sawal hai wo hai, bread ke father ko kya kahenge, bread jo khate hain hum उसके पापा को क्या कहेंगे. 3311 1063 पर मैसेज करके मुझे बताएं या फिर कॉल कर दे 4444 1063 पर. ब्रेड के फादर को क्या कहेंगे, इट इज अ काइंड ऑफ ब्रेड. इससे ज्यादा हिंट तो मैं नहीं दे सकती, आ ही जाना चाहिए इसमें तो.
2: व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर, करो क्या डायल नंबर.
0: मोबाइल नंबर मैं बता देती हूँ यार, 3311 1063.
3: कलर की साड़ी में कुड़ी है तू, डेंजर लगती है.
0: बहुत ही क्रेजी गाना है, और ये क्या बोलता है खुद समझ में नहीं आता है. देयर इज दिस हुक लाइन, वो कुछ तो भी वियर्ड वर्ड्स हैं या फिर उसका कोई मीनिंग अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे बताइएगा, ठीक है.

जी ये सारे गाने आने वाले हैं इस घंटे में. फिलहाल भेज रही हूँ अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की आवाज में कॉकटेल टू से तुझको. लेकिन फिर से क्वेश्चन बता देती हूँ, ब्रेड के फादर को क्या कहेंगे? 3311 1063 पर बताएं. स्टे ट्यून्ड एंड्रयू बिंदास मेरी जान.

0: मैं अपना नंबर दे देती हूँ यार, 3311063. You're listening to Radio 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं अब. बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछा है आज मैंने लेम ट्रांस में कि ब्रेड के फादर को क्या कहेंगे. सो आई गॉट अ फ्यू आंसर्स ओवर हियर और उसमें से सिर्फ एक ही आंसर सही है. चार्वी का मैसेज आया है मुझे जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया है. सो कंग्रेचुलेशंस टू यू डार्लिंग. लेकिन बाकी लोगों को एक और मौका देना चाहूंगी मैं कि यू नो गेस करो एक बार कि ब्रेड के फादर को क्या कहेंगे. जी इट इज अनदर काइंड ऑफ ब्रेड यार, दैट्स ऑल आई कैन से. अगर इससे ज्यादा बोलूंगी तो जवाब ही दे दूंगी. सो जरा सोचो और बताओ कि ब्रेड के फादर को, पापा को क्या कहेंगे. थोड़े से सिनोनिम्स निकालो ना यार, आ जाएगा. यू कैन डू इट, आई नो दैट. जी 3311063 इज द नंबर. यू कैन ऑल्सो कॉल बाय द वे 4444106 पर. सेंडिंग जबरदस्त हिट योर वे. स्टे ट्यून्ड एंड जियो विंदास मेरी जान.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Tanisha, आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहाँ पर. एंड लेम जेम्स का मेरा सवाल था कि ब्रेड के फादर को क्या कहेंगे. एंड द करेक्ट आंसर इज
2: हेलो दिस इज चार्वी. ब्रेड के फादर को पीता ब्रेड कहेंगे.
1: करेक्ट डार्लिंग. यस. एंड सेकंड चांस देने पे और भी लोगों के मुझे आंसर्स आ गए. चार्वी का तो मुझे सबसे पहले ही आ गया था. पीता ब्रेड इज द करेक्ट आंसर. और आप मेरा दिन बना देते हो ऐसे मेरे लेम सवालों का जवाब देकर. सो थैंक यू सो मच. एंड अभी हो गया मेरे जाने का टाइम. मिलूंगी आपसे संडे सुबह 6 बजे. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. हैव एन अमेजिंग वीकेंड टू योर सेल्फ एंड टू ऑल द पीपल हु आर कमिंग टूडे एट अबू सिद्रा मॉल फॉर बैक टू स्कूल बैश. सुपर एक्साइटेड टू मीट यू ऑल. एंड बहुत सारा फन करेंगे हम साथ में. बाकी वीकेंड के लिए जो भी आपके प्लान्स हैं बैक टू स्कूल के अलावा, येस ऑब्वियसली, वो सब बढ़िया तरीके से इंजॉय करने का. स्ट्रेस नहीं लेना किसी चीज़ का, ठीक है. काम का स्ट्रेस हम वीकडे में लिया करेंगे, ये हमने वीकेंड के लिए नहीं रखा है. एंड मेक श्योर कि आप अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें इस वीकेंड और अपने साथ वक्त बिताएं, ठीक है. बाकी अपना ख्याल रखो. वेदर थोड़ा ऊपर नीचे है तो उसका भी ख्याल रखना है. यू नो सनस्क्रीन एंड ऑल इज इम्पॉर्टेंट. स्टेइंग हाइड्रेटेड इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. ऑल्सो लाइट खाना खाना इज़ वेरी very important too. Stay healthy, stay good and take care of yourself. Aur sundriya ye radio all of 106.3 FM. Jio bindas meri jaan.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

यार कहीं बाहर ना जाऊं, बस जो है घर पे बैठूं और सो जाऊं, कोई काम करने का मन भी नहीं कर रहा है। शायद मेरी तबीयत जो है वो इतने दिनों से खराब चल रही है, इस वजह से ऐसा होगा। बाकी आप लोगों का क्या प्लान है वीकेंड का, उस पर बात करने वाले हैं। मैं हूं आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूं लाइफ मस्त है, और अब 3 घंटे हम आपकी लाइफ को मस्त बनाने की देखो कोशिश करने वाले हैं 106.3 रेडियो ऑलिव पर। फिलहाल एक अमेजिंग वाले गाने से जो है आपके दिन की और हमारे शो की जो है वो शुरुआत करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड रहिए, वॉल्यूम बढ़ाकर एंजॉय कीजिए आपकी कशिश के साथ, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: check. Brought to you by Danat Al Fahad, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो चला है इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:11 दैट इज 10:11 स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास
2: हाय रेडियो ओलिव 106.3 लिसनर्स दिस इज शाहरुख खान
3: हाय दिस इज अजय देवगन
4: हाय दिस इज अक्षय कुमार
5: हाय दिस इज अनुष्का शर्मा
6: एंड आई एम अश्विन वारसी
7: दिस इज रणवीर सिंह स्टे ट्यून्ड

0: हर रोज आती हूँ मैं आपको मौसम के बारे में बताती हूँ, लेकिन खुद का ख्याल जो है वो बिल्कुल भी नहीं रख पाती हूँ। ऐसी क्यों हूँ मैं? वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिवर, मैं हूँ आपकी कसोसन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब हर रोज आती हूँ मैं आपको अवेयर करके चली जाती हूँ कि यार देखो गर्मी बहुत पड़ रही है, ह्यूमिडिटी बहुत है, पानी पीते रहो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो, एंड खुद का रख ही नहीं पाती। इसी वजह से पिछले एक हफ्ते से इस जुकाम के चलते जो है मैं भी परेशान हो रही हूँ, अपने आस पास के हर इंसान को परेशान कर रही हूँ। क्योंकि जब आप को जो है कोल्ड होता है तो आप जो है इरिटेट होते हो हर बात से, एंड आपकी इरिटेशन जो है वो हर चीज में दिखती है। मैं हर किसी को परेशान कर रही हूँ, बात बात पे गर्म पानी मांग रही हूँ। फिलहाल देखिए दोहा में इस वक्त करंट टेम्परेचर हो रहा है, इस वक्त का करंट टेम्परेचर बात एक ही होती है वैसे तो, पर इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है 39 डिग्री सेल्सियस। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। कल मैंने कहा था कि यार ह्यूमिडिटी जो है वो धीरे धीरे करके कम हो रही है, लेकिन आज मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, बिकॉज मेरे बाल जो मैंने कल ही धोए हैं उनकी हालत खराब हो गई थी आज ह्यूमिडिटी की वजह से। सो आप बहुत सारा पानी पीते रहिए, अपने बालों का, अपना अपनी स्किन का बहुत सारा ख्याल रखिए, सनस्क्रीन लगाते रहिए। मैं आती हूँ थोड़ी सी देर में एक अमेजिंग वाला गाना फिलहाल आपके लिए प्ले कर रही हूँ, गर्म पानी पी के आती हूँ, जरा आप भी गर्म पानी पीजिए। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

मुझे ना मेरे घर वाले काफी डांटते हैं कि तुम घर की सारी बातचीत जो है वो रेडियो पर जाकर क्यों बता देती हो। अब मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि आप लोग भी तो मेरी फैमिली वाले ही हो यार। अब हम सब मिलकर एक बहुत बड़ी फैमिली है और मिलकर गॉसिप करेंगे। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो यार, क्या होता है ना कि गॉसिप जो है वो जितने ज़्यादा लोगों के साथ करो उतनी ज़्यादा मजे आती हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि कल क्या हुआ। कल जैसे ही मैंने अपना फ़ोन देखा तो मेरे भाई का उसमें मिस कॉल था, वीडियो कॉल था। एंड मैंने जब उन्हें फिर से लगाया तो वो मुझे दिखा रहा है कि देखो पापा ने नया फ़ोन लिया है। एंड उन्होंने बोला कि नया आईफोन तो लॉन्च हो नहीं रहा था, तो हमने जो है ये दूसरा जो फ़ोन है फोल्ड वाला ये ले लिया है। एंड मैं जो है उन्हें बता नहीं पाई फिर कि यार देखो बस सितंबर तक आपको रुकना था, 9 सितंबर को जो है लॉन्च डेट एप्पल ने फाइनल कर दी है अपने नए आईफोन को लॉन्च करने की। सो देखो इस पे वैसे हम डिटेल में कल बात करेंगे द टेक शो में, लेकिन अभी मैं आपको एक स्नीक पीक ये देना चाहती हूँ कि ऐसा उड़ती उड़ती खबर जो है वो आ रही है कि एप्पल ने जो है अपनी लॉन्च डेट इस 9 सितंबर की रखी है। यानी नया आईफोन जो है वो हम सब के हाथ में, मतलब ऑब्वियसली हमारे हाथ में नहीं, लेकिन लॉन्च जो है वो हो जाएगा एंड आपको देखने को मिल जाएगा इस 9 सितंबर को। सो एक्साइटेड हो या नहीं हो नए आईफोन के लिए, कौन कौन खरीदने वाला है आगे मैसेज में मुझे बता दो। फिलहाल एक बहुत अमेजिंग वाला गाना वेट कर रहा है आपका। सो स्टे ट्यून्ड रहो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: गेट रेडी सफारी अपना ब्रांड न्यू आउटलेट आपके नेबरहुड में 27 अगस्त को लेकर आ रहा है और ओपनिंग के साथ आ रहा है एक सुपर एक्साइटिंग विजिट एंड विन प्रमोशन।
2: इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है?
1: सिंपल, बस सफारी शाहानिया विजिट कीजिए, कूपन लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करके पाइए 2 शेवरलेट एक्टिवा कार्स जीतने का मौका और ओपनिंग डे पर एंजॉय कीजिए स्पेशल ऑफर्स, अमेजिंग प्राइस रिडक्शन और फेस्टिव डील्स पूरी फैमिली के लिए। सफारी शाहानिया विजिट कीजिए, शॉप कीजिए और हो सकता है नेक्स्ट ड्राइव आपकी हो।
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
4: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतर। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-561-23.

0: क्योंकि लाइफ मस्त है।
1: In association with
2: Nesto Hypermarket, now open at Old Passport Office, Karafa.

यार पता है दो टाइप के लोग होते हैं, एक टाइप का इंसान वो होता है जिसे ना मोटिवेशनल कोट्स पढ़ के जो है अच्छा फील होता है, वो मोटिवेट हो जाता है, यूट्यूब पे वीडियोस देखता है मोटिवेशनल स्पीकर्स के, एंड दूसरे इंसान वो होते हैं जिन्हें ये लगता है कि यार ये सब तो हमें ऑलरेडी पता है, बस हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है इतना सुन के। मैं जो है वो सेकंड वालों में फॉल करती हूँ, मुझे कोई कितना भी मोटिवेशन दे देना मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है ये सब कुछ, पर मैं कर नहीं पा रही हूँ कुछ भी उसके बारे में, मैं मोटिवेटेड फील नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा मोटिवेशन जो है आप खुद को देते हो। लेकिन आज मैंने एक ऐसा कोट पढ़ा जिसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार थोड़ा सा मोटिवेशन तो देखो मिला है, या कोट जो है वो मुझे अच्छा लगा है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश, एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो हर रोज मैं आती हूँ और इस सेगमेंट में आपको एक तरीका बताती हूँ कि आपके स्ट्रेस को किस तरीके से कम किया जा सकता है, लेकिन आज मैंने जो है सोशल मीडिया पे एक कोट पढ़ा जिसपे मुझे ऐसा लगा कि यार अगर हमने ये बात समझ ली ना तो फिर हमें किसी स्ट्रेस बस्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें स्ट्रेस होगा ही नहीं। वो सिंपल सा कोट ये था कि म्यूजियम ऑफ फेलियर और गैलरी ऑफ ट्राइंग, मतलब आप जो है या तो अपनी मतलब आप जब पीछे मुड़कर देखते हो तो आप उसे ये समझ सकते हो कि यार ये तो म्यूजियम ऑफ फेलियर है, एक नज़रिया ये हो सकता है आपकी जो है पास्ट को देखने का, और एक नज़रिया ये हो सकता है गैलरी ऑफ ट्राइंग, यानी आपने एटलीस्ट कोशिश तो की, भले ही आप अकम्प्लिश नहीं कर पाए कुछ चीज़ें, लेकिन आपने ट्राई किया, एंड उस ट्राइंग के प्रोसेस में कितना कुछ आप में यू नो इवोल्यूशन आया, आपने कितना खुद को चेंज किया। सो आज इस कोट के हिसाब से जो है एक बार खुद चल के देखो एंड खुद के पास में मुड़ के देखो कि यार ठीक है माना जो हमें बनना था वो हम नहीं बन पाए, लेकिन इस प्रोसेस में कुछ अलग ही बनकर आ गया यार, कुछ कमाल का बन के आ गया, एंड जो आपका प्रेजेंट है वो बहुत अमेजिंग है, आपके पास से तो बहुत अच्छा है, आपने इवॉल्व किया है किसी ना किसी तौर पे, एंड अभी बहुत लंबा रास्ता चलना है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए एंड कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
1: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी

0: देखिए ऑफिशियली वीकेंड जो है वो थोड़ी सी देर में शुरू हो जाएगा, यानी कुछ लोग जो है शाम ढलते ढलते अपने वीकेंड को एंजॉय करना शुरू कर चुके होंगे। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कसूस अंशो, आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखो आज वीकेंड का क्या प्लान है इस पर हम बात कर रहे थे, तो मैं तो देखो बैक टू स्कूल जो हम अबू सिद्रा मॉल में करने वाले हैं उसमें रहने वाली हूँ, एंड बच्चों के साथ बहुत सारा फन फॉलिंग मस्ती और मजा करने वाली हूँ। अगर आप भी अबू सिद्रा मॉल आ रहे हैं तो बिल्कुल हमें हाय हेलो करके जाइएगा, एंड अगर आप वो हैं जिन्होंने अपने बच्चों को रजिस्टर किया है और जो हमसे मिलने आने वाले हैं तो वेल एंड गुड, मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए। खैर इसी के साथ साथ मैं वो भी बता देती हूँ कि और कौन कौन सी एक्टिविटीज अगर आप बच्चों के साथ करना चाहते हैं तो वो आप एंजॉय कर सकते हैं। पॉ पेट्रोल का द बिग शो रेस्क्यू जो है वो हो रहा है, जिसमें गर्मी से बचकर आप इंडोर के मजे जो है वो ले सकते हैं। बच्चों के फेवरेट स्टेज शो जो है पॉ पेट्रोल के कैरेक्टर्स जो है उनके साथ मीट एंड ग्रीट सेशन जो है वो कर सकते हैं। ये सैटरडे को जो है होने वाला है मॉल ऑफ कतर में। एंड अगर स्पेस स्पोर्ट्स एंड फिटनेस एक्टिविटीज की हम बात करें तो रन द डोम 2026 हो रहा है सैटरडे को सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक एस्पायर डोम में, एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो चल रही हैं। कलरवर्स एक्सपीरियंस जो है, लाइट एंड इंटरैक्टिव गेम प्ले, साउंड डिज़ाइन, ये सब जो है एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं 15 सितंबर तक। सो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आप कहीं ना कहीं इंजॉय कर सकते हैं इस वीकेंड। लिस्ट बहुत लंबी है सो वो मैं थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल वॉल्यूम बढ़ाकर अमेजिंग वाले गाने जो है वो इंजॉय कीजिए, और आपकी कसूस के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Radio Olive पर आने वाला गाना Cool Song of the

0: Listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: Get ready. Safari अपना brand new outlet आपके neighborhood में 27th August को लेकर आ रहा है और opening के साथ आ रहा है एक super exciting visit and win promotion.
2: इसमें participate कैसे करना है?
1: Simple. बस Safari Shahania visit कीजिए. Coupon lucky draw में participate करके पाइए दो Chevrolet Captiva cars जीतने का मौका और opening day पर enjoy कीजिए special offers, amazing price reduction और festive deals पूरी family के लिए. Safari Shahania. विजिट कीजिए, शॉप कीजिए और हो सकता है नेक्स्ट ड्राइव आपकी हो.
0: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर.

देखो यार, मैं तो वो इंसान हूँ जिसे वीकेंड पे बाहर जाना तो पसंद है, लेकिन अपने बेड से भी बाहर नहीं निकलना होता है। कभी कभी लगता है काश अपना ही क्लोन बना सकते तो दो लाइफ एंजॉय कर सकती, बेड पे सो भी सकती एंड बाहर जाके एंजॉय भी कर सकती। मुझे तो बहुत कंफ्यूजन होता है यार कि क्या किया जाए वीकेंड पे। वेलकम जो 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड सो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए, अगर आप वो इंसान है जिसे ट्रेजर, आर्टिफैक्ट्स और यू नो म्यूजियम्स में इंटरेस्ट है, सो आपके लिए एक बहुत ही परफेक्ट चीज जो है वीकेंड पर आप कर सकते हैं वो है सदियों पुरानी हिस्टोरिक ट्रेजर एंड आर्टिफैक्ट्स की एक ब्रेथ टेकिंग जो है एग्जीबिशन लगी हुई है म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में, तो वहां पर आप जा सकते हैं। एंड कल्चरल ओलंपियाड कॉम्पिटिशन एग्जीबिशन जो है वो भी चल रही है, सो स्पोर्ट्स और आर्ट का ब्लेंड जो है वो दिखाती हुई क्रिएटिव एंट्रीज को आप 3-1 कतर ओलंपिक एंड स्पोर्ट्स म्यूजियम में जो है वो देख सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो कतर में होती रहती है, सो आप इंजॉय कर सकते हो। एंड देखो यार, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके लिए कोई प्लान बनाए, आप तो निकलो एंड आपको ऑटोमेटिकली प्लान्स जो है वो बनते हुए दिख जाएंगे। मैं हूँ आपकी कसूस, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए। खैर, अगर आप वो इंसान है जो घर पे रहने का सोच रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो देखेंगे कंटेंट, तो क्या मूवी जो है वो आप देख सकते हो वो मैं आपको बताने वाली हूँ थोड़ी सी देर में, तो बने रहो मेरे साथ और कहते रहो जियो बिंदास।

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल

मेरे लिसनर्स, अगर आप मेरे ही तरह आलसी हैं और आप इस वीकेंड पर कहीं नहीं जाने का प्लान कर रहे हैं एंड ये सोच रहे हैं कि यार घर पे ही बैठ के कोई मूवी देख लेंगे, तो मैं जो है आपकी मदद करने के लिए आ चुकी हूँ। हाँ, उन लोगों को मैंने जो है ऑलरेडी बता दिया है कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं कतर में, जिनको बाहर जाने का बहुत मन है। लेकिन अगर आप वो इंसान है जो घर बैठ के रेस्ट करना चाहते हैं, कोई मूवी एंजॉय करना चाहते हैं, तो एक अमेजिंग सी हट के मूवी जो है मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ। मूवी का नाम है RK/RKAY। ये जो है 2022 की एक बहुत ही यूनिक सी, क्लेवर और मेटा कॉमेडी फिल्म है, जिसे रजत कपूर जी जो है उन्होंने डायरेक्ट किया है और लीड रोल भी जो है उन्होंने ही निभाया है। सो अगर आपको थोड़ा सा यू नो आउट ऑफ द बॉक्स हटके सिनेमा पसंद है, तो ये आपके लिए जो है एक बढ़िया वॉच हो सकती है। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कसर, सो आपके लिए लाइफ मस्त ले गया आ गई हूँ, जहाँ पर लाइफ मस्त बनाने की जो है मैं कोशिश कर रही हूँ आपकी। सो देखो यार, ये स्टोरी जो है ये एक इंडी फिल्म मेकर की है, जो मतलब मूवी बनाते हैं एंड अचानक से उनकी मूवी का एक कैरेक्टर जो है वो मूवी से बाहर आ जाता है रियल लाइफ में। एंड ये मूवी आपको रियलाइज कराएगी कि कहाँ पे जो है रियलिटी खत्म हो रही है एंड मूवी शुरू हो रही है, समझ नहीं आएगा बेसिकली। और यही इस मूवी को बहुत ज्यादा यूनिक बनाता है। ब्रिलियंट डायरेक्शन है, ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेज हैं, सो एक बार आपको जरूर से देखनी चाहिए। थोड़ी सी हाँ स्लो पेस्ड है, ऐसे नहीं है कि स्लैपस्टिक कॉमेडी नहीं है हाउसफुल जैसी कि आपको देखते ही मजा आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये मूवी डेवलप होती है एंड एक सटल कॉमेडी है इसमें। मतलब आपको हंसी नहीं आएगी बहुत ठहाके वाली, लेकिन आपको मजा बहुत आएगा। सो फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आपको रेगुलर कमर्शियल फिल्मों से हटके थोड़ी क्वर्की एस्थेटिक और यू नो दिमाग चलाने वाली कॉमेडी जो है वो देखनी है, सो आप ये मूवी देख सकते हैं। एंड बिल्कुल, मैं तो देखो इसको एटलीस्ट यार 3.5 तो देने वाली हूँ। 3.5 इसलिए क्योंकि ये कमर्शियल मूवी नहीं है, थोड़ी स्लो चलती है, सो हो सकता है कि अगर आप में पेशेंस की कमी है तो आपको ऐसा लगे कि यार बहुत स्लो है, बट थोड़ा सा पेशेंस दिखाओगे बहुत अमेजिंग लगेगी। आर के मूवी का नाम है, जाके जरूर से देखिएगा एंड फिर देखने के बाद मुझे बताइएगा आपको ये कैसी लगी। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, फैशन की बातचीत जो है वो जारी रखेंगे। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त से, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए, जैसे गर्मी चल रही है एंड मतलब फैशन में जो है वो काफ़ी सारे बदलाव आ रहे हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें वापस आ रही हैं। गर्मी के चलते जो है जूते पहनना, हील पहनना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया यार, मेरे से तो नहीं पहने जाते। इसीलिए इन ट्रेंड आ गई है फ्लिप फ्लॉप्स, यानी जो आपकी वो पुरानी जो चप्पल थी ना, वो थिक एकदम थिन स्ट्रैप वाली, वो अब इन ट्रेंड आ गई है एंड लोग उसे केपरीज के साथ, स्कर्ट्स के साथ, डेनिम के साथ जो है पेयर कर रहे हैं एंड लिटरली एक शीक स्टेटमेंट जो है ये चप्पल बन गई है। तो अगर आपके पास आपके बाथरूम के बाहर अभी भी वो पतली स्ट्रैप वाली जो है चप्पल रखी है, तो उसे निकालो एंड उसे पहन के बाहर चले जाओ। नहीं, वो एस्थेटिक नहीं लगेगी, लेकिन हाँ उसी का एक एक अच्छा वर्जन, एक थोड़ा एस्थेटिक वर्जन जो है वो इस वक्त काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। सो ये एक ऐसा फुटवेयर है जो अभी आप कंफर्ट के साथ जो है यूज़ कर सकते हो इन समर्स में। सो एक बार ट्राई ज़रूर करना। मैं हूँ आपकी कशिश, ऐसे ही फैशन की और बातचीत जो है जारी रखेंगे, लेकिन शाहरुख खान के घर पर क्या हो रहा है इसकी गॉसिप जो है मैं आपको देने वाली हूँ थोड़ी सी देर में। तो स्टे ट्यून रहना और आपकी कशिश के साथ कहते रहना जियो बिंदास।
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: Check. Brought to you by Nanatal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Alkhol.
1: सुनो
2: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
3: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
2: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
4: मैं हूँ सारिका.

0: क्या ये आपके साथ कभी हुआ है बचपन में कि आप सो रहे हो और अचानक से एक छुट्टी वाले दिन वीकेंड पे जो है पापा रैंडम अंकल को जो है वो पंखा दिखाने के लिए या कबर्ड ठीक कराने के लिए या टाइल्स ठीक कराने के लिए लेकर आ गए एंड आप रूम में सो रहे हो और आप जैसे ही आंखें खोलते हो आपके रूम में एक रैंडम इंसान होता है जिसे आप नहीं जानते एंड वो अपना काम कर रहा है। सो ये फीलिंग तो मुझे आई है क्योंकि पापा जो है हाइपर एक्टिव हो जाते हैं वीकेंड पे। वेलकम जी 106.3 रेडियो ओलिवर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अब देखिए यार ये पता नहीं ये मुझे अभी क्यों याद आया लेकिन बस मुझे याद आ गया था। वैसे सेम हालत जो है अभी शाहरुख खान साहब की भी हो रही है क्योंकि शाहरुख खान का जो घर है मन्नत, वैसे इसे घर नहीं बंगलो कहना चाहिए, बंगलो जो है मन्नत, उसमें काम चल रहा है रिनोवेशन का एंड एक जी जो है एक सर जी जो है जो वहां पर काम कर रहे हैं इंटीरियर्स का, उन्होंने अपने कॉन्टेंट की जगह बना ली है उनके घर को, वो जो है वहां से व्लॉगिंग कर रहे हैं कि ये शाहरुख खान जी का जो है बेडरूम है और यहाँ की खिड़की पे हम ये मार्बल लगा रहे हैं, या आज गौरी खान जी ने जो है वो हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया, उन्होंने जो है हमारा काम जो है नापसंद करके फिर से शुरू से करवाया। तो वो ब्लॉगिंग कर रहे हैं एंड लोग जो है अब उस पर ही कह रहे हैं कि भाई शाहरुख खान का घर सेफ नहीं है, यहाँ प्राइवेसी की कोई लाइन ही नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ये कैसे कर रहे हैं। सो इस पर जो है इंटरनेट पे काफ़ी डिबेट जो है वो हो रहा है। अब देखते हैं शाहरुख खान साहब को ये अभी तक पता चला है या नहीं चला है, जैसे भी मुझे पता चलेगा तो मैं आपको बताऊंगी उनका रिएक्शन क्या रहा है। पर यार देखो थोड़ा सा तो अजीब है, देखो बॉलीवुड के किंग के घर में ऐसा हो रहा है, उनका घर ही जो है वो प्राइवेसी का सोर्स नहीं हो पा रहा है, तो फिर हम क्या हैं। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए आपकी कशिश के साथ और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: देखिए आपको तो मैंने ये बता दिया कि यार क्या कुछ खास जो है वो आप कर सकते हैं वीकेंड पर, लेकिन मेरा प्लान क्या है वो तो मैंने आपको बताया ही नहीं। हाँ हाँ, ये मैं बता चुकी हूँ कि कल मैं सोने वाली हूँ और कोई काम नहीं करने वाली हूँ, लेकिन आज शाम का क्या प्लान है वो बताती हूँ मैं आपको। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल एफ पर, मैं हूँ आपकी कसर्स एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। सो बस आपसे बातचीत करने के बाद मैं फटाक से तैयार होकर निकलने वाली हूँ अबू सिद्रा मॉल की तरफ, क्योंकि वहाँ पर बैक टू स्कूल जो है वो इवेंट हमने रखा हुआ है, जहाँ पर हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो आएंगे और एक बार किताबें खोलने से पहले यानी स्कूल जाने से पहले जो है खुल के खेलने का उनको मौका मिलने वाला है। बहुत अमेजिंग एक्टिविटीज जो है वो हमने प्लान कर ली है। आपको रेडियो ऑलिव के आरजे से भी वहां मिलने का मौका मिलने वाला है, तो जिन लोगों ने भी रजिस्टर कर लिया है बस बढ़िया है। आपसे हम मुलाकात करने वाले हैं अबू सिद्रा मॉल में आज 3 बजे से 7 बजे के बीच में। सो अगर आपका वहां पर आना जाना हो तो हमें हाय हेलो कहते हुए जाना। बाकी देखो, फन और फॉलिक, मस्ती और मजा तो रेडियो ऑलिव का दूसरा नाम है।
1: वेन्यू पार्टनर अबू सिद्रा मॉल, वेयर कन्वीनियंस मीट्स चॉइस एंड कम्युनिटी मीट्स स्टाइल। अबू सिद्रा मॉल, अ कंप्लीट फैमिली डेस्टिनेशन।
2: गिफ्टिंग पार्टनर डाइसो जापान, यू नेम इट वी हैव इट।
1: एंड
2: दोहा सेंटर, शॉप मोर पे लेस,
1: ओल्ड एयरपोर्ट रोड दोहा एंड अलकोर।
2: कॉल 7022525।
1: क्रिएटिव पार्टनर प्लैनेट स्क्रिबल्स वर्ल्ड वाइड, वेयर एवरी चाइल्ड्स इमेजिनेशन कम्स अलाइव। फॉर मोर डिटेल्स फॉलो प्लैनेट स्क्रिबल्स Gulf on Instagram.
3: Pizza partner Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding at the heart.

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
4: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
3: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
4: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
3: द वेट इज फाइनली ओवर। बी

0: लाइफ मस्त है हर सुबह 10 से 1 सिर्फ रेडियो ओलिव पर, क्योंकि लाइफ मस्त है
1: इन एसोसिएशन विद नेस्टो हाइपरमार्केट, नाउ ओपन एट ऑल

0: चलिए गाइज, यहाँ से टाटा बाय बाय करके जाने का वक्त आ गया है, लेकिन कल हमारी मुलाकात होने वाली है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आप मेरे साथ लाइफ मस्त है शो एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने की मैं कोशिश कर रही थी। अब कल मुलाकात होगी हमारी द टेक शो में शाम को 4 बजे से 6 बजे के बीच में, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ। तब तक आप अपना वीकेंड जो है वो बढ़िया तरीके से इंजॉय करते रहिए, मुझे याद करते रहिए। रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को जाकर फॉलो कर लीजिए, ताकि हमारी हर अपडेट हर एक्टिविटी आपको जो है मिलती रहे, आप उसे देखते रहे। बाकी गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइएगा, खाना खाते रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, हाइड्रेशन का क्योंकि ध्यान रखना है, और सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी अब कल, टाटा बाय बाय, ख्याल रखना, टेक केयर।
1: रेडियो ऑलिव पर सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: शहानिया गेट रेडी सफारी अपना ब्रांड न्यू आउटलेट आपके नेबरहुड में 27 अगस्त को लेकर आ रहा है और ओपनिंग के साथ आ रहा है एक सुपर एक्साइटिंग विजिट एंड विन प्रमोशन।
2: इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है?
1: सिंपल, बस सफारी शहानिया विजिट कीजिए, कूपन लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करके पाइए 2 शेवरले कैप्टिवा कार्स जीतने का मौका और ओपनिंग डे पर एंजॉय कीजिए स्पेशल ऑफर्स, अमेजिंग प्राइस रिडक्शन और फेस्टिव डील्स पूरी फैमिली के लिए। सफारी शहानिया विजिट कीजिए, शॉप कीजिए और हो सकता है नेक्स्ट ड्राइव आपकी हो।
0: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
3: अनलॉक योर चाइल्ड्स पोटेंशियल विद ब्रिलियंट कतर। 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvatra. For more details, call 500-561-23.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: मैं हूं अनिल कपूर, रेडियो ओलिव, यू आर विद
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
3: रेडियो ओलिव, आई एम नंबर वन।
0: ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक

0: कहानियां गेट रेडी सफारी अपना ब्रांड न्यू आउटलेट आपके नेबरहुड में 27 अगस्त को लेकर आ रहा है और ओपनिंग के साथ आ रहा है एक सुपर एक्साइटिंग विजिट एंड विन प्रमोशन
1: इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है
0: सिंपल बस सफारी शाहानिया विजिट कीजिए कूपन लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करके पाइए दो शेवरले कैप्टिवा कार्स जीतने का मौका और ओपनिंग डे पर एंजॉय कीजिए स्पेशल ऑफर्स अमेजिंग प्राइस रिडक्शन और फेस्टिव डील्स पूरी फैमिली के लिए सफारी शाहानिया विजिट कीजिए शॉप कीजिए और हो सकता है नेक्स्ट ड्राइव आपकी हो
2: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन रूटीन केयर ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है कॉल 4411133 ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम
4: Olive Music Marathon. 1 ghanta. 1 ghanta. Non-stop back to back.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
1: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है कैसे समझाऊं इस लड़के को
2: उफ़ सुबह शाम बस यही टेंशन बच्चों को लेक्चर नहीं हम देंगे फुल ऑन फन बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
2: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर
1: Brought to you by Riyadhar Medical Center.
3: JCI Accredited Riyadhar Medical Center. Har din aapki seva mein karirat hai.
4: Visit Riyadhar Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
5: Mornings and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे कुर्सी की बेटी बांध लीजिए क्योंकि आओ में एक सफर शुरू करने वाले हैं जहां पे गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो चलिए धीरे धीरे ये सिलसिला शुरू करते हैं। आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और यही बोलते हुए किक स्टार्ट करते हैं ऑलिव रिचार्ज को और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ready safari apna brand new outlet aapke neighborhood mein 27th august ko lekar aa raha hai aur opening ke sath aa raha hai ek super exciting visit and win promotion
2: isme participate kaise karna hai
1: simple bas safari shahania visit kijiye

0: की ड्रॉ में पार्टिसिपेट करके पाइए दो शेवरलेट एक्टिवा कार्स जीतने का मौका और ओपनिंग डे पर एंजॉय कीजिए स्पेशल ऑफर्स अमेजिंग प्राइस रिडक्शन और फेस्टिव डील्स पूरी फैमिली के लिए सफारी शहानिया विजिट कीजिए शॉप कीजिए और हो सकता है नेक्स्ट ड्राइव आपकी हो
1: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर
2: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alvakra. For more details, call 500-56123.
3: Hi, Radio Olive. 106.3 listeners. This is Ranveer Singh. Stay tuned.
1: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे एक कहानी मैंने सुनी जहां पे इंडिया में एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने अपने ईवी कार का बैटरी जो है रिपेयर किया। उसे 2 दिन लगे इस काम में, मगर लाखों का खर्चा जो है उसने बचा लिया। और इससे लोग बोल रहे थे कि देखिए, प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग नॉलेज का फायदा यही होता है। बट उसके साथ साथ बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि भाई, ईवी रिपेयर करना इज नॉट एन ईजी थिंग और वो काफी सेफ्टी रिस्क के साथ आता है। तो अच्छा हुआ कि आपने अच्छे से काम कर लिया, बट उसके हजार्ड्स भी बहुत सारे होते हैं करके। और ये सुन के मुझे याद आया कि जब मैं 3rd ईयर के बाद सेम ब्रेक के लिए जब गया था दिल्ली में, जिस दिन मैं पहुंचा उसी दिन मेरे घर का कंप्यूटर ठीक करवाने के लिए एक मैकेनिक को मम्मी ने बुलाया था। तो वो आए, वो काम कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि क्या करते हो आप। मैंने बोला मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो बोले कौन सी इंजीनियरिंग? मैंने बोला कंप्यूटर साइंस। अरे आपके लिए तो ये बहुत ईजी काम होगा, मक्खन होगा। मैंने बोला देखो जरा, जिस दिन मैं आया हूँ उसी दिन मम्मी ने आपको बुलाया है कंप्यूटर ठीक कराने के लिए। आपको पता चल गया होगा ना कि मेरी एक्सपर्टाइज कहाँ रहती है करके। तो वो भी हंसने लग गया। बढ़िया, यही बात बताते हुए जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: वेलकम बैक, यू लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे बता दूं कि मैं थोड़ी ही देर में बैक टू स्कूल बैच शुरू होने वाला है अबू सिद्रा मॉल में। 3 बजे जो है हमारी टीम वहां पहुंच जाएगी धमाकेदार एक इवनिंग बच्चों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए, स्कूल खुलने से पहले, बस्ता जमाने से पहले बच्चों के साथ एंजॉय करने के लिए, फन करने के लिए, उनको ढेर सारे गिफ्ट देने के लिए हम पहुंचने वाले हैं। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: Venue partner, Abu Sidra Mall, where convenience meets choice and community meets style. Abu Sidra Mall, a complete family destination.
2: Gifting partner, Daiso Japan, you name it, we have it.
1: And
2: Doha Center, shop more, pay less.
1: Old Airport Road, Doha and Alcor.
2: Call 70222525.
1: Creative partner, Planet Scribbles Worldwide, where every child's imagination comes alive. For more details, follow Planet Scribbles Gulf on Instagram.
3: Pizza partner, Papa John's. Order, earn, repeat with Papa Rewards. Download Papa John's app and enjoy more rewards.
1: Refreshment partner, Al Wajba Dairy and Al Shamal Pure Drinking Water. Distributed by Gulf Center Holding. At

0: एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक.
1: अरमान मलिक
0: 106.3 FM रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क. कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम फास्टिंग के बेनिफिट्स के बारे में बात करना चाहेंगे। देखिए, फास्टिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहला, बॉडी में ऑटोफैजी करके एक प्रोसेस होता है, वो किक इन करता है जो बॉडी के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है, धीरे धीरे बॉडी को अंदर से बहुत क्लीन कर देता है, हम बहुत हल्का फील करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ ऑर्गन्स को एक मच डिजर्व्ड, वेल डिजर्व्ड जो रेस्ट है वो मिल जाता है, गट को एक रेस्ट मिल जाता है जो हमारे डाइजेशन को इवेंचुअली इम्प्रूव ही करेगा। और उसके साथ साथ मैं ये भी याद दिलाऊंगा आपको कि फूड का फास्टिंग तो इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ डिजिटल स्पेस से भी कभी कभी फास्ट लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो आपके मेंटल वेलबींग को बहुत इम्प्रूव करेगा। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year।

0: चार्ज हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुधीर रेडियो ओनली 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: Hello listeners, my name is Rajpal Yadav. Rajpal Yadav. और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क
3: रेडियो ओलिव नंबर वन ओलिव लगा और हो जा रिचार्ज ओलिव रिचार्ज
4: ओलिव रिचार्ज रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैंने थोड़ी देर पहले एक खबर देखी जहां पे एक AI बॉट के रिपोर्ट के हिसाब से एक बॉस ने अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया। 14 मिनट्स उस लड़की के डैशबोर्ड में उसे इनएक्टिव दिखाया उस AI ने, जिसके कारण उसके बॉस ने बोला कि यू आर फ्री टू गो करके। तो मैं सोचा कि यार ये AI बेस्ड डिसीशंस इतना ज़्यादा लोग मानने लग गए कि मतलब AI खुद कहता है कि मैं थोड़ी गलतियाँ कर सकता हूँ, तो सोच समझ के मेरी बात मानना करके। और देखिए, बॉसेस को तो बस मौका चाहिए होता है देखने का किसी को निकालने का। तो मुझे कई बार लगा है, मैंने कई दफ़ा लिंक्डइन में भी बहुत सारे पोस्ट देखे थे, बहुत सारे लोगों से बात की थी, और मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं इंडिया में, उन सबसे जब मैं बात करता हूँ तो मुझे कई बार फील हुआ है कि यार ये बॉसेस ना बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं होते कि एक एम्प्लॉय इतना उनके लिए कर रहा है, वो अपना पर्सनल टाइम निकाल के भी अगर इतना काम कर रहा है तो एक ग्रेटफुलनेस नहीं होती, विच इज़ एन ऑब्वियस थिंग, क्योंकि लोग कहते हैं कि दिस इज़ वर्क, राइट? यहाँ पे तुम काम कर रहे हो, देर इज़ नो इमोशनल बाउंडेशन कि तुम्हें ग्रेटफुल फील करना नहीं करना है। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, एक हफ्ता काम बंद कर देते हैं, तब पता चलेगा ना कि एक बंदे की वैल्यू क्या होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब एक इंसान वहाँ पे अपना सब कुछ देता है, अपने वर्क प्लेस में अपना सब कुछ देता है, अपना टाइम देता है, अपनी एनर्जी देता है, तो थोड़ा ग्रेटफुलनेस बनता है, एंड इट्स अ ह्यूमन थिंग। डोंट ट्राई टू यू नो मैकेनाइज दिस बिजनेस वर्ल्ड, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी आर वर्किंग हियर, हम सब इंसान ही हैं, जज्बात होते हैं, तो इंसानों की तरह रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के नाम पे इंसान को इंसान ना बनाना इज नॉट एक्सेप्टेबल। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

0: Shahania, get ready. Safari अपना brand new outlet आपके neighborhood में 27th August को लेकर आ रहा है. और opening के साथ आ रहा है एक super exciting visit and win promotion.
1: इसमें participate कैसे करना है?
0: Simple. बस Safari Shahania visit कीजिए. Coupon lucky draw में participate करके पाइए दो Chevrolet Captiva cars जीतने का मौका. और opening day पर enjoy कीजिए special offers, amazing price reduction और festive deals पूरी family के लिए. Safari Shahania. Visit कीजिए, shop कीजिए और हो सकता है next drive आपकी हो.
2: Safari, world-class shopping experience. Doha, Qatar.
3: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है. कैसे समझाऊं इस लड़के को.
4: उफ, सुबह शाम बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब.
3: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
4: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
3: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
4: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
3: Brought to you by Riyadha Medical Center.
5: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
6: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
3: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more clean.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैंने थोड़ी देर पहले खबर देखी जहां पे एक एआई बॉट के रिपोर्ट के हिसाब से एक बॉस ने अपने एम्प्लॉय को निकाल दिया। 14 मिनट्स उस लड़की के डैशबोर्ड में उसे इनएक्टिव दिखाया उस एआई ने, जिसके कारण उसके बॉस ने बोला कि यू आर फ्री टू गो करके। तो मैं सोचा कि यार ये एआई बेस्ड डिसीशंस इतना ज़्यादा लोग मानने लग गए कि मतलब एआई खुद कहता है कि मैं थोड़ी गलतियां कर सकता हूँ, तो सोच समझ के मेरी बात मानना करके। और देखिए, बॉसेस को तो बस मौका चाहिए होता है देखने का किसी को निकालने का। तो मुझे कई बार लगा है, मैंने कई दफ़ा लिंक्डइन में भी बहुत सारे पोस्ट देखे थे, बहुत सारे लोगों से बात की थी, और मेरे फ्रेंड्स, मेरे जो बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं इंडिया में, उन सबसे जब मैं बात करता हूँ, तो मुझे कई बार फील हुआ है कि यार ये बॉसेस ना बिल्कुल भी ग्रेटफुल नहीं होते कि एक एम्प्लॉय इतना उनके लिए कर रहा है, वो अपना पर्सनल टाइम निकाल के भी अगर इतना काम कर रहा है, तो एक ग्रेटफुलनेस नहीं होती, विच इज़ एन ऑब्वियस थिंग, क्योंकि लोग कहते हैं कि दिस इज़ वर्क, राइट? यहाँ पे तुम काम कर रहे हो, देर इज़ नो इमोशनल बाउंडेशन कि तुम्हें ग्रेटफुल फील करना नहीं करना है। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, एक हफ्ता काम बंद कर देते हैं, तब पता चलेगा ना कि एक बंदे की वैल्यू क्या होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब एक इंसान वहाँ पे अपना सब कुछ देता है, अपने वर्क प्लेस में अपना सब कुछ देता है, अपना टाइम देता है, अपनी एनर्जी देता है, तो थोड़ा ग्रेटफुलनेस बनता है, एंड इट्स अ ह्यूमन थिंग। डोंट ट्राई टू यू नो मैकेनाइज दिस बिजनेस वर्ल्ड, वी ऑल आर ह्यूमंस, वी आर वर्किंग हियर, हम सब इंसान ही हैं, जज्बात होते हैं, तो इंसानों की तरह रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के नाम पे इंसान को इंसान ना बनाना इज नॉट एक्सेप्टेबल। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो रिसेंटली मैं अपने एक अंकल से बात कर रहा था। उन्होंने मुझे बोला था कि कभी कभी कुछ कंपनीज बोलते हैं कि वो इनोवेटिव हैं, मगर अगर आप 100% कंप्लायंस क्लेम करते हो तो वहां पे इनोवेशन नहीं है। सिमिलरली क्रिएटिविटी अगर हम बात करें तो क्रिएटिविटी इज ऑलवेज आउट ऑफ द बॉक्स। आप कभी भी एक बॉक्स के अंदर इंसानों को रख के क्रिएटिव रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दैट इज अ फ्यूटाइल एक्सपेक्टेशन। उसके साथ साथ मैंने रिसेंटली एक पोस्ट देखा इंस्टाग्राम में, जहां पे सवाल लिखा था हाउ टू फेल एट मार्केटिंग / एडवर्टाइजिंग। नीचे जवाब आया है हायर अ क्रिएटिव टीम एंड टेल देम व्हाट टू डू। देखिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है, मैं बता देता हूँ आपको। ट्रू क्रिएटिविटी जो है वो फ्रीडम मांगती है, ट्रस्ट मांगती है और रूम टू एक्सपेरिमेंट मांगती है। अगर ये सब हम नहीं प्रोवाइड कर सकते तो फिर एक क्रिएटिव टीम को रखना छोड़ दो, आप AI से ही काम करवा लो। क्योंकि क्रिएटिविटी में जब इंसान गलतियां नहीं करता, सोचता नहीं है, अपने सोचने के दायरे को जब तक पुश नहीं करता, तब तक एक अच्छा आउटपुट नहीं आता। बट प्रॉब्लम यह है कि लोग भूल जाते हैं, अब क्या कर सकते हैं, मार्केट है ना ऐसा। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे एक्सीडेंटल इन्वेंशंस में हम बात करेंगे टेफ्लॉन के बारे में। ठीक है, तो रॉय जे प्लंकेट जो है, उन्होंने सबसे पहला टेफ्लॉन मॉलिक्यूल जो है एक लेबोरेटरी में बनाया। वो एक अमेरिकन कंपनी में काम करते थे जिसका नाम है डूपोंट, और वहां पे वो एक कूलेंट गैस बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो एक अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, टेट्रा फ्लोरो इथिलीन इसका गैस जो है वो सॉलिडिफाई हो गया और थोड़ा सा वैक्सी वाइट पाउडर जैसा बन गया, जो हीट रेजिस्टेंट है और नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज भी उसमें है। और यही टेफ्लॉन बाद में जो है नॉन स्टिक मफिन बेकिंग ट्रेज या फिर नॉन स्टिक कुकवेयर में यूज करने लगे लोग। कुछ और बनाने की

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Shahania, get ready. Safari apna brand new outlet aapke neighborhood mein 27th August ko lekar aa raha hai. Aur opening ke saath aa raha hai ek super exciting visit and win promotion.
2: Isme participate kaise karna hai?
1: Simple. Bas Safari Shahania visit kijiye. Coupon lucky draw mein participate karke paiye do Chevrolet Captiva cars jeetne ka mauka. Aur opening day par enjoy kijiye special offers, amazing price reduction aur festive deals puri family ke liye. Safari शहानिया विजिट कीजिए शॉप कीजिए और हो सकता है नेक्स्ट ड्राइव आपकी हो
0: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर
3: टफ काम और भी आसान कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले विजिट कार्मल ग्रुप नाउ
4: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन रूटीन केयर ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है कॉल 4411133 ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम
5: सलाम प्रणाम नमस्कार वणकम मैं हूं जैकी श्रॉफ
6: रेडियो 106.3
5: जियो बिंदास
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे हमने कई दफा देखा है या फिर सुना है कि एग्जाम हॉल में बच्चे जो है पकड़े गए हैं फोन यूज करते हुए या फिर कोई भी डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल डिवाइस यूज करते हुए चीटिंग करने के लिए। मगर इतने इनोवेटिव हो गए हैं लोग कि उन्होंने एक ऑर्डिनरी साइंटिफिक कैलकुलेटर को एक पावरफुल एआई डिवाइस बना दिया। ठीक है, डेवलपर्स ने जो है कैसियो के एक साइंटिफिक कैलकुलेटर में ESP32S3 माइक्रो कंट्रोलर, वाईफाई कनेक्टिविटी और कस्टम हार्डवेयर यूज करके थोड़ा मॉडिफाई किया, और ये मॉडिफाइड कैलकुलेटर जो है वो एआई मॉडल को क्वेश्चन सेंड कर सकता है ओवर इंटरनेट, और रिस्पॉन्सेज जो है उसके ओरिजिनल स्क्रीन में डायरेक्टली डिस्प्ले कर सकता है। और कुछ एडवांस्ड वर्शंस में छोटा सा कैमरा भी है जो एआई को क्वेश्चंस या फिर इक्वेशंस एनालाइज करने में हेल्प करता है, हैंड रिटन नोट्स एनालाइज करने में हेल्प करता है, डायग्राम्स को देखने में हेल्प करता है, और ये सब देख के वो आंसर्स को जनरेट कर सकता है। तो बाहर से तो भाई ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर लगता है जो एग्जाम हॉल में अलाउड है, मगर अंदर से ये एक मिनिएचर इंटरनेट कनेक्टेड एआई कंप्यूटर जैसा वर्क करता है जो कभी भी हमें एडवांस्ड असिस्टेंस दे सकता है। और ये एक इनोवेशन जो है एक्चुअली थोड़ा सा डरावना भी है, क्योंकि लोग जो है एग्जाम सिक्योरिटी, एकेडमिक इंटीग्रिटी, इन सब के बारे में बात करने लग गए हैं, और उसके साथ साथ एआई पावर्ड टूल्स को डिटेक्ट करना कितना मुश्किल हो सकता है उसके बारे में भी जो है डिबेट छिड़ चुकी है। और यही बात बोलते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: Unlock your child's potential with Brilliant Qatar. 15 years of excellence and trust. Expert coaching for NEET, JEE and CBSE. Offline and online options. Our 6th branch is now open at Alwakra. For more details, call 500-56123.
1: Suno. आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ओलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक रेडियो ओलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया, जानी तो क्या किया, सीधा जाइए इंस्टाग्राम पे radioolive.qa सर्च कीजिए, फॉलो कीजिए, कॉन्टेंट चेकआउट कीजिए, पोस्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। उसके साथ साथ जब भी आप हमें सुन रहे हो तो भाई वीडियो बनाइए, इंस्टाग्राम पे डालिए, हमें टैग कीजिए, हम उस स्टोरी को रीशेयर करेंगे। एंड मेन बात यह है कि हम कई डिजिटल कॉन्टेस्ट जो हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी पोस्ट करते हैं, तो आपके पास गिफ्ट जीतने के मौके भी हैं। और यही बात बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास
1: शहानिया गेट रेडी सफारी अपना ब्रांड न्यू आउटलेट आपके नेबरहुड में 27 अगस्त को लेकर आ रहा है और ओपनिंग के साथ आ रहा है एक सुपर एक्साइटिंग विजिट एंड विन प्रमोशन
2: इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है
1: सिंपल बस सफारी शहानिया विजिट कीजिए कूपन लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करके पाइए दो शेवरले कैप्टिवा कार्स जीतने का मौका और ओपनिंग डे पर एंजॉय कीजिए स्पेशल ऑफर्स अमेजिंग प्राइस रिडक्शन और फेस्टिव डील्स पूरी फैमिली के लिए सफारी शहानिया विजिट कीजिए शॉप कीजिए और हो सकता है नेक्स्ट ड्राइव आपकी हो
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर
4: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में
5: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर
4: योर स्पेशल ऑफर
5: हाँ ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ
4: वाह ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है
5: बिल्कुल मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है
4: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो
6: लगा और हो जा रिचार्ज
0: ओलिव रिचार्ज रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
7: This hour is brought to you by
8: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे 5 बजने वाले हैं, मेरा वक्त यहाँ खत्म होने वाला है और कल वीकेंड आने वाला है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से चिल करना है आपको, मजे करने हैं, खुश रहना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने खास लोगों को खुश रखना है और हमें जरा दुआओं में याद रखना है। तो फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडो ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
2: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है. कैसे समझाओ इस लड़के को.
3: सुबह शाम बस यही टेंशन. बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन. बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
2: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से.
3: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
2: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज.
3: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर.
2: Brought to you by Riyadha Medical Center.
1: JCI Accredited Riyadha Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
4: Visit Riyadha Medical Center on Searing Road, Doha.
2: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning

अब आपको समझ लगी होगी कि इतनी ज्यादा एक्साइटेड में क्यों, क्योंकि वीकेंड आ गया। लेकिन मेरा शो चालू हुआ है, बट ये शो इसलिए चालू हुआ है क्योंकि एंटरटेनमेंट आप लोगों के लिए चालू है, तो चार घंटे में भी अपने ही है। सो क्विकली आप मुझे बताइए कि आपका आज का दिन कैसा रहा। 3311063 पर वापस लौट के आपके वीकेंड के प्लान के बारे में बात करेंगे, और मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात भी करनी है, वो भी मैं करूंगी, तो फिर थोड़ा सा इंतजार कर लो यार। जी अविनाश।

0: आते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो।

0: Olive 106.3 FM Gio Bendaz.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी टू शॉप।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: आरजे सिमरन के साथ।
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

हाँ जी, हैप्पी वाला वीकेंड है जी। सोनियों की दादी की हाल चाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर है तुहाडे नाल। सो वीकेंड के आप लोगों के क्या प्लान्स है? घर पे रह रहे हो, बाहर जा रहे हो, क्या कर रहे हो मुझे बताओ 3311063 पर। जो मैंने आपसे जरूरी बात ये करनी है कि मैं जा रही हूँ अपनी छुट्टी पे, एनुअल लीव है तो ज्यादा नहीं है, मतलब थोड़े दिन के बीच में जो है वो मैं वापस आ जाऊंगी, ठीक है। सो आप मेरे को ज्यादा जो है वो मिस मत करिएगा, बट बहुत जल्दी जो है अपनी छुट्टी बिता के अपनी फैमिली वालों से मिलके मैं जरूर आ जाऊंगी। क्योंकि ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि सैटरडे को जब आप मेरी आवाज ना सुन सके तो समझ जाए कि सिमरन गौर आपको बता के गई है, ठीक है। सो बहुत सारा मिस करिएगा मुझे और बहुत सारे मैसेजेस जो है वो आप मुझे भेज सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे, मेरी पर्सनल इंस्टाग्राम आपको लोगों को पता ही है, हम सभी आरजेस का अपना अपना भी अकाउंट है, रेडियो ऑलिव को भी आप फॉलो करते हैं तो हम लोगों को भी कर लीजिएगा, तो वहां पे आप जो है वो मेरी छुट्टी को देख सकते हैं कि मैं छुट्टी पे क्या क्या कर रही हूँ। सुन रही है रेडियो ऑलिव, गौर के दे रही है जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को।
2: सुबह शाम बस यही टेंशन, बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
1: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
2: तो इस 4th सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
1: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपर हीरोज।
2: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
1: Brought to you by Riyada Medical Center.
3: JCI Accredited Riyada Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
4: Visit Riyada Medical Center on Searing Road, Doha.
1: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine. 5x more cleaning power when added to brushing.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ
6: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ सिमरन कौर है थोड़े नाल। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने एक बार फिर से वॉर्न किया। देखो बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन जिनको नहीं पता है कि मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग कर रहे हैं तो ये ट्रैफिक का वायोलेशन है, जहां पर आपको अगर ये रिस्क लेना है तो आपको फाइन जो है वो लगेगा, बिल्कुल हैवी फाइन जो है वो, मतलब हो सकता है कि आपको 10,000 कतरी रियाल से लेकर 50,000 कतरी रियाल का फाइन लगे और भी चीजें जो है वो आपको भुगतनी पड़ सकती है। सो मेक श्योर कि आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो, ऐवे ही नहीं चलेगा। ठीक है, हैप्पी वीकेंड, सुनते रहो रेडियो ऑलिव गोर, कहते रहो जियो बिंदास।

0: खाना खत्म, पैसा हजम।
1: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
2: शहानिया गेट रेडी सफारी अपना ब्रांड न्यू आउटलेट आपके नेबरहुड में 27 अगस्त को लेकर आ रहा है और ओपनिंग के साथ आ रहा है एक सुपर एक्साइटिंग विजिट एंड विन प्रमोशन।
3: इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है?
2: सिंपल, बस सफारी शहानिया विजिट कीजिए, कूपन लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करके पाइए 2 शेवरले कैप्टिवा कार्स जीतने का मौका और ओपनिंग डे पर एंजॉय कीजिए स्पेशल ऑफर्स, अमेजिंग प्राइस रिडक्शन और फेस्टिव डील्स पूरी फैमिली के लिए। सफारी शहानिया, विजिट कीजिए, शॉप कीजिए और हो सकता है नेक्स्ट ड्राइव आपकी हो।
1: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
4: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।

0: है मौसम के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है।
1: मौसम
0: सुना देते हैं जी। आदत है मैं ऑफिस में बैठे बैठे ना टेम्परेचर बाहर का चेक करती रहती हूँ, और आज जब मैंने 1 से 2 बजे के बीच में टेम्परेचर चेक किया था 41 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा था, लेकिन फील्स लाइक 47 डिग्री सेल्सियस जो था वो दिखा रहा था। सो यार बहुत ही ज्यादा बुरे हाल है। आज का मिनिमम टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस होने वाला और हाईएस्ट 43 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमिडिटी की बात करें तो 6 बजे जो है अपना अभी, सो 60% ह्यूमिडिटी है 37 टेम्परेचर के साथ, एंड 8 बजे 66 हो जाएगी ह्यूमिडिटी 36 टेम्परेचर के साथ, एंड 10 बजे रात के 69% हो जाएगी 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ, और रात के 11 बजे तो भाई फट्टे चके जाएंगे 70% जो है वो ह्यूमिडिटी हो जाएगी 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ। सो या ये है मौसम के हाल। सुंदरी रेडियो ओलिव गोर के जरिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Served with pride. Nanatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Alkhor.
2: सुनो सुनो सुनो आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है
3: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स
2: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन
3: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस गराफा
2: द वेट इज फाइनली ओवर बी रेडी टू शॉप
4: हाय मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो अलूप पे
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
7: Zabardast evening. Make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: शहानिया गेट रेडी सफारी अपना ब्रांड न्यू आउटलेट आपके नेबरहुड में 27 अगस्त को लेकर आ रहा है और ओपनिंग के साथ आ रहा है एक सुपर एक्साइटिंग विजिट एंड विन प्रमोशन।
2: इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है?
1: सिंपल, बस सफारी शहानिया विजिट कीजिए, कूपन लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करके पाइए 2 शेवरले कैप्टिवा कार्स जीतने का मौका और ओपनिंग डे पर एंजॉय कीजिए स्पेशल ऑफर्स, अमेजिंग प्राइस रिडक्शन और फेस्टिव डील्स पूरी फैमिली के लिए। सफारी शहानिया विजिट कीजिए, शॉप कीजिए और हो सकता है नेक्स्ट ड्राइव आपकी हो।
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
4: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
6: साथ जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: भाई मुझे नहीं समझ लग रहा कि इस न्यूज पे मैं हंसू या मैं मतलब ये सोचूं कि भाई दिमाग क्या है यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ
2: व्हाट द वायरल ये बात है।
0: हां जी आपके साथ सो एक न्यूज जो है वो बहुत ज्यादा वायरल होती है। रीना नाम की एक बंदी जो है वो रातों रात गायब हो जाती है। गायब होने से दिक्कत नहीं है लेकिन वो गायब पता कैसे होती है कि बेड के ऊपर 5 फीट लंबी जो स्नेक की शेड रहती है ना, स्नेक की जो एक चमड़ी सी रहती है वो व्हाइट व्हाइट कलर की, 5 फीट लंबी स्नेक की चमड़ी जो है और चूड़ियां टूटी हुई बेड पे रह जाती है। और उनके जो फैमिली वाले ये सोचते हैं कि भाई साहब ये जो है वो सांप बन गई है और यहाँ से निकल गई है। एक्चुअली उसका इस शादी से भागने का एक तरीका था जो उसने प्लान किया था क्योंकि बहुत सारे हिंदी सीरियल देख लिए दीदी ने पहले तो लोगों ने भी बिलीव किया लेकिन उसके बाद जो था धीरे धीरे ये सारी चीजें सॉल्व हुई। लेकिन यार मतलब सोच रही हूँ कि लोगों के क्या क्या दिमाग लगते हैं ना यार। सिमरन कौर आपके साथ, अविनाश दीदी सांप बन गई। हाँ सही है यार।

0: की शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
1: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
0: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: सिमरन के साथ.
4: Zabardast evening. Make your drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: चलो ये डिकोड करते हैं अब।
1: अच्छा जी,
2: Gen Z decoded.
1: ऐसा है क्या?
2: दा दा दा।
0: हाँ जी। एजेंसी से चैट कर रहे हैं और उसने आपको लिख के भेज दिया LMK, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। LMK का मतलब होता है लेमिनोचिया। हर रोज हम जेंजी लिंगो को जो है वो डिकोड करते हैं एंड काफी कूल वर्ड्स होते हैं यार, अगर आप अपनी डेली लाइफ में भी इसको ऐड करते हो तो मजा ही आएगा आपको। सामने वाले को मतलब खुद समझने पे जो है वो आप मजबूर कर दोगे, सामने वाला सोचेगा यार ये क्या बात बोल दिया यार इसने। सुंदर ये रेडियो ऑलिवर के अंदर ये जियो बिंदास हैप्पी वीकेंड, अपने वीकेंड के प्लान बताते रहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 3311063 पर जियो बिंदास रेडियो।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी टू शॉप।
3: टफ काम और भी आसान। कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
4: शहानिया गेट रेडी। सफारी अपना ब्रांड न्यू आउटलेट आपके नेबरहुड में 27 अगस्त को लेकर आ रहा है और ओपनिंग के साथ आ रहा है एक सुपर एक्साइटिंग विजिट एंड विन प्रमोशन।
5: इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है?
4: सिंपल, बस सफारी शहानिया विजिट कीजिए, कूपन लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करके पाइए 2 शेवरले कैप्टिवा कार्स जीतने का मौका और ओपनिंग डे पर एंजॉय कीजिए स्पेशल ऑफर्स, अमेजिंग प्राइस रिडक्शन और फेस्टिव डील्स पूरी फैमिली के लिए। सफारी शहानिया, विजिट कीजिए, शॉप कीजिए और हो सकता है नेक्स्ट ड्राइव आपकी हो।
6: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस, दोहा कतर।
7: रोहन कितनी बार बोला है खाना खाने से पहले हैंड वॉश करना है, कैसे समझाऊं इस लड़के को?
8: सुबह शाम बस यही टेंशन। बच्चों को लेक्चर नहीं, हम देंगे फुल ऑन फन। बिकॉज रियादा मेडिकल सेंटर और ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क लेकर आए हैं बैक टू स्कूल जूनियर केयर क्लब,
7: जहां बच्चे खेलेंगे रियल लाइफ गेम्स और सीखेंगे हेल्थ एंड हाइजीन की इम्पोर्टेंस एकदम मजेदार तरीके से।
8: तो इस 4 सितंबर को अपने 7 से 10 साल के लिटिल चैंपियंस को लेकर आओ रियादा मेडिकल सेंटर पर
7: सुबह 9 बजे एंड लेट देम प्ले, लर्न एंड बिकम अल्टीमेट हेल्थ एंड हाइजीन सुपरहीरोज।
8: टू रजिस्टर व्हाट्सएप OR स्पेस आपका नाम 3311063 पर।
7: Brought to you by Riyadhar Medical Center.
9: JCI Accredited Riyadhar Medical Center. Har din aapki seva mein karyarat hai.
10: Visit Riyadhar Medical Center on Searing Road, Doha.
7: Hygiene and wellness partner, Johnson's. 99.9% germ removal now with micellar technology. Listerine, 5x more cleaning.

आलिया भट्ट की अल्फा मूवी फिल्म आपने देखी थी? मैंने अभी क्या बोला? अल्फा मूवी फिल्म। यार कभी कभी आप कुछ भी बोलते हो, नहीं समझ लगता यार। सो अल्फा मूवी जो है, अगर आपने नहीं देखी थी, जो कि आलिया भट्ट की आई थी, सो काफी ज्यादा एक्शन जो था वो आलिया भट्ट का दिखा था, और मैंने भी ये फिल्म जो थी वो नहीं देखी थी, लेकिन अब आप और हम मिलके ये फिल्म इस वीकेंड पे देख सकते हैं, क्योंकि ये नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी आज रात 9:30 बजे या फिर कल सुबह तक आप इसको देख सकेंगे। आलिया भट्ट, शार्वरी, अनिल कपूर, बॉबी देओल, बहुत सारे लोग हैं इसमें, और मजेदार फिल्म है ऐसा मेरे को सुनने में आया था। बट यस, बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि OTT पे आने का आप इंतजार कर सकते हो, तो ये इंतजार अब खत्म हो जाएगा आज रात को या फिर कल सुबह, क्योंकि 28 का रिलीज बता रहे हैं, बट रात को तो अपने यहाँ पे जैसे ही 9:30 बजते हैं तो 12 बज ही जाते हैं इंडिया में। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।

0: Shahania, get ready. Safari अपना brand new outlet आपके neighborhood में 27 August को लेकर आ रहा है. और opening के साथ आ रहा है एक super exciting visit and win promotion.
1: इसमें participate कैसे करना है?
0: Simple. बस Safari Shahania visit कीजिए. Coupon lucky draw में participate करके पाइए दो Chevrolet Captiva cars जीतने का मौका. और opening day पर enjoy कीजिए special offers, amazing price reduction और festive deals पूरी family के लिए. Safari Shahania. Visit कीजिए, shop कीजिए और हो सकता है next drive आपकी हो.
2: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.
3: Fresh fish on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Dana Dal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
4: Hi everyone, this is Benny Dial here. Olive Radio 106.3. Jubindas.
2: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
5: Radio Olive, I'm the number one.
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
7: आरजे सिमरन के साथ
8: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
9: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
10: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: किसी को अनॉय करता है ना तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: हाँ जी किसी में इतनी हिम्मत हो नहीं सकती कि आपको एनॉय कर दे, आपको गुस्सा चढ़ा दे, आपको छेड़ दे, आपको एकदम चिढ़ मच जाती है, राइट। लेकिन फिर भी एक इंसान आपकी लाइफ में होता है कि जब वो आपको एनॉय नहीं करता है, जब वो आपको नहीं चिढ़ाता है, जब वो आप पे गुस्सा नहीं कर रहा है, जब आपको वो डांट नहीं रहा है, तो आपको अच्छा नहीं लगता। आपको लगता है यार इसकी लाइफ में कुछ सही नहीं चल रहा है क्या। तो आप चाहते हो कि यार वो आपको डांटे, वो आपको बुरा भरा बोले, वो आपको चिढ़ा दे, आप चिल्ला दो आप उस पे। ऐसे इंसान बहुत ज्यादा खास होते हैं। ये प्यार का एक अलग ही लेवल होता है जब आप चाहते हो कि सामने वाला आपके ऊपर बरस पड़े और आप उसके ऊपर बरस पड़े, क्योंकि जब वो नॉर्मल रहता है आपको मजा ही नहीं आता। यार मैंने ना मेरी लाइफ में, मेरे खुद का भी इसी तरह से पता नहीं मेरी जिंदगी में है कि मेरे आसपास के जो लोग हैं वो मुझे नॉर्मल देखना ही नहीं चाहते हैं। मतलब जब तक मैं चिल्लाऊं ना या मैं बेवकूफ सी हरकतें ना करूं, इरिटेट ना करूं, तब तक लोगों को लगता है मैं ठीक ही नहीं हूं। तब मतलब वो हरकतें मुझे करनी पड़ती हैं, मेरा सिस्टम भी ऐसे ही बन चुका है यार। सो अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है, सो भाई साहब बहुत स्पेशल है यार वो, और आप भी स्पेशल हो क्योंकि वो आपकी जिंदगी में है। सुप्रीम गौरी आपके साथ, जी हो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है.
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स.
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन.
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा.
1: द वेट इज फाइनली ओवर. बी रेडी टू शॉप.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। बिंदास।
1: शहानिया गेट रेडी सफारी अपना ब्रांड न्यू आउटलेट आपके नेबरहुड में 27 अगस्त को लेकर आ रहा है और ओपनिंग के साथ आ रहा है एक सुपर एक्साइटिंग विजिट एंड विन प्रमोशन।
2: इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है?
1: सिंपल, बस सफारी शहानिया विजिट कीजिए, कूपन लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करके पाइए 2 शेवरले कैप्टिवा कार्स जीतने का मौका और ओपनिंग डे पर एंजॉय कीजिए स्पेशल ऑफर्स, अमेजिंग प्राइस रिडक्शन और फेस्टिव डील्स पूरी फैमिली के लिए। सफारी शहानिया विजिट कीजिए, शॉप कीजिए और हो सकता है नेक्स्ट ड्राइव आपकी हो।
3: सफारी वर्ल्ड क्लास शॉपिंग एक्सपीरियंस दोहा कतर।
4: टफ काम और भी आसान, कार्मल ग्रुप लाया है शैंटुई के व्हील लोडर्स, एक्सकेवेटर्स और बुलडोजर्स। मजबूती ऐसी जो हर चैलेंज जीत ले। विजिट कार्मल ग्रुप नाउ।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
8: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
9: लुलू हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

हूँ फिर बिना देर लगाए नेम गेम खेले। चक दे हम फिर फट्टे। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका नाम मैं अभी कभी रेडियो पे बोलूं तो आपको बस मुझे अपना नाम ही बताना होगा, और अपना नाम बताना ऐसे नहीं है मतलब हेलो मेरा नाम वहां पे बैठे बैठे नहीं, आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ, 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के मुझे भेज दीजिए। चलिए अब मैं नाम बोलना स्टार्ट कर रही हूँ। आसमा, मोहम्मद जी, राजीव जी, शरद जी, लियाकत जी, अब्रार जी, एक और लियाकत खान जी, थैंक यू सो मच, रहमान जी, उस्मान जी, एसके जी, बिलाल जी, इमरान जी, शशिकांत जी, नजीमुल्ला जी, मनी जी, थैंक यू सो मच। हेलो मत लिखो, हेलो क्या होता है, अपना नाम लिखो यार। 3311063 पर राहत जी, थैंक यू सो मच, खान साहब थैंक यू सो मच, शेख साहब थैंक यू सो मच, सिकंदर जी थैंक यू सो मच, डेजी जी थैंक यू सो मच, सईद जी थैंक यू सो मच, वसीफ जी थैंक यू सो मच, विसल जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। किसी ने हेलो लिख के भेज दिया। मंजू जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। अफसर जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। इमरान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। कामरान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया बेटा, अब आप थैंक यू लिखो अच्छे बच्चे बन के, और अपना फेवरेट वाला इमोजी भेज दो। जियो बिंदास।

0: Shahania, get ready. Safari अपना brand new outlet आपके neighborhood में 27th August को लेकर आ रहा है. और opening के साथ आ रहा है एक super exciting visit and win promotion.
1: इसमें participate कैसे करना है?
0: Simple. बस Safari Shahania visit कीजिए. Coupon lucky draw में participate करके पाइए दो Chevrolet Captiva cars जीतने का मौका. और opening day पर enjoy कीजिए special offers, amazing price reduction और festive deals पूरी family के लिए. Safari Shahania. Visit कीजिए, shop कीजिए और हो सकता है next drive आपकी हो.
2: Safari, world-class shopping experience, Doha, Qatar.
3: Life 24/7 चलती है, तो dental care सिर्फ office hours में क्यों मिले? Naseem Surgical and Medical Center, C Ring Road का dental department अब है 24/7 open. Routine care, treatment या dental emergency, expert dentist और advanced facilities के साथ care हर वक्त available है. Call 4411133. Also visit our dental centers in Azizia or Muntaza. Naseem Surgical and Medical Center, healthy smiles anytime.
4: Hi guys, this is Abar Chetty Khurana and you are listening to Radio Olive.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
6: आरजे सिमरन के साथ
7: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास
2: ओसम
3: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
4: क्या बात है सर क्या बात ये बात है

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: GCC का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर। बी रेडी टू शॉप।
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के। भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे
4: सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद।
6: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
7: लुलु हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

देखो इस वीकेंड अगर आप शॉपिंग करने की सोच रहे हो तो आई गॉट यू ब्रो। सीधा बिना देर लगाए मॉल ऑफ कतर में चले जाइए क्योंकि 26 तारीख से ही शुरू हो चुकी है और 29th ऑफ अगस्त तक चलने वाली है। चार दिन की ये सेल में आपको 20% से लेके 80% तक ऑफ मिलेगा बहुत सारे ब्रांड्स पर। सो मेक श्योर ये जो अप टू 80% डिस्काउंट आपको इस मेगा सेल में मिलने वाला है मॉल ऑफ कतर में, इसका नाजायज फायदा आप जरूर उठा लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा मजा जो है वो डेफिनेटली आपको आने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे फैशन, ब्यूटी, फुटवेयर, होम, स्पोर्ट, बैक टू स्कूल एसेंशियल्स, बहुत सारी चीजों पे जो है वो आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। सो ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। बाकी तो सुनते रहो रेडियो ऑलिव, कहते रहो जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप

चलो डार्लिंग, अब सिमरन गौर के यहाँ से गल्टी माने का टाइम आ चुका है। हैप्पी वीकेंड जी। जरूरी बात है, जिन्होंने स्टार्टिंग में नहीं सुना था, मैंने शो के स्टार्ट में भी आपको बताया था कि मैं आपको सैटरडे को नहीं मिलने वाली हूँ। मैं एक छोटी सी छुट्टी पे जा रही हूँ क्योंकि एनुअल लीव का टाइम आ गया यार। सो छोटी सी छुट्टी के बाद मैं वापस लौटूंगी, फिर से हम बात करेंगे। क्योंकि अगर आपको सैटरडे को मेरी आवाज ना सुनाई दे तो आपको ये ना लगे यार सिमरन गौर कहाँ चलेगी। तो बाकी मेरे सोशल मीडिया पे मैं आपको दिखी जाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। रेडियो ऑलिव के सोशल मीडिया को आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, हम सभी आरजेज वहां पे भी आपको मिलते हैं। सो एक छोटी सी छुट्टी के बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद। टिल देन ओवरथिंकिंग मत करिएगा, हैप्पी वीकेंड को एंजॉय करिएगा, एंड खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना, बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, आई लव यू सो किलो।

0: 3FM.
1: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है
2: तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए
1: बिकॉज लुलू बिग फाइव डेज डील्स आर हियर 31st August तक ग्रैब बिग डील्स ऑन फ्रेश फूड्स ग्रोसरीज होम अप्लायंसेज मोबाइल्स लैपटॉप टीवी फैशन और एवरीडे

0: सुनो सुनो सुनो,
1: आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
2: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स।
1: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
2: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
1: द वेट इज फाइनली ओवर, बी रेडी टू शॉप।
3: Radio Olive.

0: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है
1: तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए बिकॉज लुलू बिग फाइव डेज डील्स आर हियर 31st August तक ग्रैब बिग डील्स ऑन फ्रेश फूड्स ग्रोसरीज होम अप्लायंसेज मोबाइल्स लैपटॉप टीवी फैशन और एवरीडे एसेंशियल्स और ऑनलाइन शॉपिंग का बोनस भी 89 रियाल से ऊपर के ऑर्डर्स पर फ्री होम डिलीवरी तो देर किस बात की 5 डेज बिग डील्स बिग सेविंग्स विजिट लुलू हाइपरमार्केट्स या शॉप ऑनलाइन एट लुलू हाइपरमार्केट.com लुलू बिग 5 डेज डील्स मिस किया तो डील गई

0: 93 Radio Olive.
1: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए बिकॉज लुलु बिग फाइव डेज डील्स आर हियर 31st अगस्त तक ग्रैब बिग डील्स ऑन फ्रेश फूड्स ग्रोसरीज होम अप्लायंसेस मोबाइल्स लैपटॉप टीवीज फैशन और एवरीडे एसेंशियल्स और ऑनलाइन शॉपिंग का बोनस भी 89 रियाल से ऊपर के ऑर्डर्स पर फ्री होम डिलीवरी तो देर किस बात की 5 डेज बिग डील्स बिग सेविंग्स विजिट लुलु हाइपरमार्केट या शॉप ऑनलाइन एट luluhypermarket.com लुलु बिग 5 डेज डील्स मिस किया तो डील
2: The best music on the best radio show.

0: सुनो सुनो सुनो, आपकी शॉपिंग का तरीका अब बदलने वाला है।
1: जीसीसी का पॉपुलर नेस्टो हाइपरमार्केट अब फाइनली आ गया है कतर में विद अनबिलीवेबल इनॉग्रल ऑफर्स,
0: और अब पार्किंग की भी नो टेंशन।
1: कतर्स फर्स्ट नेस्टो हाइपरमार्केट, ओल्ड पासपोर्ट ऑफिस, गराफा।
0: द वेट इज फाइनली ओवर।

DJs actually do.

0: शॉपिंग लिस्ट बड़ी है
1: तो सेविंग्स भी बिग होनी चाहिए बिकॉज लुलू बिग फाइव डेज डील्स आर हियर 31st अगस्त तक ग्रैब बिग डील्स ऑन फ्रेश फूड्स ग्रोसरीज होम अप्लायंसेज मोबाइल्स लैपटॉप टीवीज फैशन और एवरीडे एसेंशियल्स और ऑनलाइन शॉपिंग का बोनस भी 89 रियाल से ऊपर के ऑर्डर्स पर फ्री होम डिलीवरी तो देर किस बात की 5 डेज बिग डील्स बिग सेविंग्स विजिट लुलू हाइपरमार्केट या शॉप ऑनलाइन एट लुलू हाइपरमार्केट.com लुलू बिग 5 डेज डील्स मिस किया तो डील गई

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: द बेस्ट म्यूजिक ऑन द बेस्ट रेडियो शो द हिट्स This is Club Olive.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: द बेस्ट म्यूजिक ऑन द बेस्ट रेडियो शो.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है
1: अभी बजाएगा ना भिड़ो